ब्रह्म पूरन मन भाणी जल थल महियल रविया सोए नानक सब किश प्रभ ते होए। भैरव महला पंजवा मन तन राता राम रंग चरणे सर्ब मनोरथ पूरन करणे आठ पहर गावह भगवंत सतगुर दिनो पूरा मंत सोवड़ भागी।

0: समर्थ दोवें अधिक दे सहित पाठ करने।
1: प्रभ की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुख आराधा हो, दुश्मन दुख न आवे नेरे रहाओ। आपे वन त्रिण त्रिपवन सार, जाके सूत परोया संसार। आपे शिव शक्ति संजोगी, आप निर्वाणी आपे भोगी। जात कत पेखो।

मुकत भुगत जुगत वस जाकै ऊणा नाही किछ जन ताकै कर किरपा जिस होए सो प्रसन्न नानक दास सेई जन धन पैरो महला पंजवा भगता मन आनंद गोबिंद अस्थित भय बिनसी सब चिंद पै ब्रह्म बिनस गए खिन माहे पार ब्रह्म वस्या मान आए राम राम संत सदा सहाय घर बाहर नाले परमेसर रव रहया पूर्ण सब ठाए रहाओ तन माल जोबन जुगत गोपाल जी प्राण नित सुख प्रतपाल अपने दास कौ दे राखे हाथ निमख न छोड़े सद ही साथ हरसा प्रीतम अवर न कोय सार संभाले साचा सोय मात पिता सुत बंध नारायण आद जुगाद भगत।

सगल चुकाया सब ते वड समर्थ गुरदेव सब सुख पाई तिसकी सेव रहाओ जाका किया सब किछ होए तिसका अमर ना मिटै कोए पार ब्रह्म परमेसर अनूप सफल मूरत।

धाम का निवास। तिस गुर कहो सद करी नमस्कार, तिस गुर कहो सद जाओ बलिहार। सतगुर के चरण धोए धोए पीवा, गुर नानक जप जप सद जीवा।

प्रहलाद सब चाटड़े विगारे, हमारा कहया ना सुने अपने कारज सवारे। सब नगरी मह भगत दृढ़ाई, दुष्ट सभा का किछ ना वसाई।

नाओ तराया जो तुर लिखिया सो आए पहुता जन स्यों वाद रचाया पिता प्रहलाद स्यों गुरज उठाई कहां तुम्हारा जगदीश गुसाई जग जीवन दाता अंत सखाई जह देखा तह रहया समाई।

जन्म जन्म के केलविक दुख काट है दुविधा रत्ती नाराई। हम मूढ़ मुग्ध किछ बुझ नाही तू आपे देह बुझाई। जो तुद भावै सोई करसी अवर न करना जाई। जगत उपाय तुद धंधै लाया भूंडी कार कमाई। जन्म पदार्थ जूवै हारिया सबदै सुरत ना पाई। मनमुख मरह तिन किछु न सूझै दुर्मत अज्ञान अंधारा। भव जल पार न पावह कबही डूब मुए बिन गुर सिर भारा। साचे शब्द रत्ते जन साचे हर प्रभ आप मिलाए। गुर की बाणी शब्द पछाती साच रहे लिव लाए। तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल गुर कै शब्द विचारे। नानक तिन कै सद बलिहारे राम नाम उर धारे। भैरव महला पंजवा अष्टपदिया घर दूजा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद। जिस नाम हृदय सोई वड राजा जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा। जिस नाम हृदय तिन कोट धन पाए नाम बिना जन्म बिरथा जाए। तिस सालाही जिस हार तन रास सो वड भागी जिस गुरमस्तक हाथ रहाओ। जिस नाम हृदय तिस कोट कई सैना जिस नाम हृदय तिस सहज सुखैना।

युगता जिस नाम हृदय तिन नौ निध पाई नाम बिना भ्रम आवै जाई जिस नाम हृदय सो वे परवाहा जिस नाम हृदय तिस सद ही लाहा जिस नाम हृदय तिस वड परवारा नाम बिना मनमुख गावारा जिस नाम हृदय तिस निहचल आसन जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन जिस नाम हृदय सो साचा साहो नामहीन नाही पात वे साहो जिस नाम हृदय सो सब मह जाता जिस नाम हृदय सो पुरख विधाता जिस नाम हृदय सो सब ते ऊंचा नाम बिना भ्रम जोनी मूचा जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा जिस नाम हृदय तिस मिटिया अंधारा जिस नाम हृदय सो पुरख परवान नाम बिना फिर आवन जान तिन नाम पाया जिस

कोट ब्रह्मांड जाके त्रमसाल कोट महेश उपाए समाए कोट ब्रह्मे जग साजन लाए ऐसो तनी गोविंद हमारा वर्ण ना साको गुण।

कोट सकत शिव आज्ञाकार, कोट जी देवै आधार, कोट तीर्थ जाके चरण मझार, कोट पवित्र जपत नाम चार, कोट पूजारी करते पूजा, कोट विस्थारन अवर न दूजा, कोट महिमा जाकी निर्मल हंस, कोट उस्तत जाकी

नानक कहो प्रभ मिलियो अचिंता, कहो नानक कीरत हर साची, बहर बहर तिस संग मन राची रहाओ। अचिंत हमारे भोजन पाओ, अचिंत हमारे लीचे नाओ, अचिंत हमारे शब्द उधार, अचिंत हमारे परे भंडार।

मन वस कीता, अचिंत प्रभु हम किया दिलासा, अचिंत हमारी पूरन आसा, अचिंत हमा कौ सगल सिद्धांत, अचिंत हम कौ गुर दीनो मंत।

पूजव ना देवा राम भगत बिन निःफल सेवा सतगुर पूजव सदा सदा मनावो ऐसी सेव दरगह सुख पावो लोग कहे कबीर बौराना कबीर का मर्म राम पहचाना उल्ट जात कुल दो बिसारी सुन सहज मह

साध संगत आर गुर की कृपा ते पकरियो गाढ़ को राजा भगवत पीर सगत सिमरन की कटी काल पै फासी दास कमीर चढ़ियो गढ़ ऊपर।

मरन छूटै भ्रम भाग्य रहाओ अबरन बरन स्यों मन ही प्रीत हमै गावन गावह गीत अनहद शब्द होद चुनकार जह पौड़े प्रभ श्री गोपाल खंडल मंडल मंडल मंडा त्रे अस्थान तीन त्रे खंडा अगम अगोचर रहया अब अंत पार न पावै को धरनी धर्मंत कदली पोहप धूप परगास राज पंकज मह लियो निवास द्वादश दाल अब अंत।

0: देहुरा फिर
1: प्रतख वचन आप जी ने सुने हन देहुरा पाछे बैठा जाए। देहरा कहिंदे ने मंदर नूं, मंदर दे पिछले पासे भगत जी कहिंदे असीं जा के बैठे, ज्यो ज्यो नामा ज्यो ज्यो भगत नामदेव जी हर गुण उचरै, जदों हरी दे नाम नूं उचारण करदे हन भगत जना कौ देहरा फिरै, भगतां दे वल नूं देहरा मंदर फिरदा गया, ज्यो ज्यो रब नूं याद करी गया मंदर दा मूंह घुमदा गया। अज कही कही जांदे जी बिरती घुम गई उन्हां दी, जिहड़े पहलां 5 मिंट गालां कढ रहे सी उन्हां दी बिरती घुमण दा कारण की बनिया, उन्हां दी बिरती उन्हां दा हंकार टुटण करके साध संगत जी परमेश्वर ने घुमाई है। जे मंदिर ना घूमदा तो पहले तो गालां कढ रहे सी भी तू छोटी जातदा है। अपने आप नू लॉजिक वाला दसन वाले लोग इस लॉजिक नू भुल जांदे ने कि जेड़ा सानू 5-10 मिनट अद्धा घंटा पहला गालां कढे मंदे शब्द बोले कि तू नीवी जातदा है, तो 5-10 मिनटां बाद फिर इस तरह किदां हो जाएगा कि उहदा मन बिना किसी खेड तो ही बिना किसी कौतक तो ही बदल गया? नहीं। सत संगत जी परमेश्वर ने सारी कला वरताई, उस मंदिर का मूंह घुमा के भगत जी वल नू कर दिता। हांजी।

0: बिस्मिल गौ देहो जीवाए ना तर गर्दन मारो ठाए।
1: बिस्मिल गौ इथे विश्राम लाउणा, बिस्मिल गौ देहो जीवाए ना तर गर्दन मारो ठाए।
0: बादशाह ऐसी क्यों होए बिस्मिल किया ना जीवै कोए।
1: साध संगत दी भी एक कौतक ही भगत जी दर्शा रहे हन, जदों भगत जी दे नाल भगत जी नूं साध संगत जी परेशान कीता जा रहा सी, उन्हां नूं कहा जा रहा सी करामात विखावो, जे तुसी करामात नहीं कर दिखाउणी ते इस्लाम नूं कबूल कर लो तां भगत जी दे अगे शर्त रखी गई सी, जां ते मरी हुई गां नूं जिउंदियां करो, जे मरी गां नहीं जिउंदियां करनी ते इस्लाम नूं कबूल करो जां पंडतां पुणतां दीआं गल्लां मल्लो। तां उह सारे उस समें दी विथिया नूं भगत जी अपनी मुबारक रसना तों दर्शा रहे हन। सुल्तान पूछै सुन बेनामा, सुल्तान जेड़ा उस समय दा साध संगत जी राजा सीगा ना, मुहम्मद बिन तुगलक बादशाह उस समय बहुत जारी जेड़ी ओदी प्यारी गऊ सी ना, वह मर गई। उस संबंधी भगत जी वंगार के कहिंदा के जां ओ इनामिया मेरा ता जां ता मेरी गऊ दिखा जेड़ी जिउंदी कर दे, तेनू करामाती कहिंदे ने लोक, नहीं ते फिर इधर नू आ जा, नहीं ते तेनू मार देंगा। ऐसे वचन भगत जी दे अगे रखे तो फिर इत्थे परमेश्वर ने किवें भगत जी दी लाज रखी इज्जत रखी, वह सारे बयान जो भी उस समय साध संगत जी उस दे नाल होए सुल्तान दे नाल भगत जी दसदे होए उस परमेश्वर की खेड नू दसदे हन।

गुरु रूप सत्संग जीओ फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धार्मिक पुरुषों ने खास करके धार्मिक लिखारी साहित्यकार विद्वान उन्हां दा ऐसा कहना है कि मनुखा नूं पंज श्रेणियां विच वंडिया जा सकता है, या इंज कह लईए मनुख धार्मिक दृष्टिकोण दे मुताबक पंज तरह दे ही हुंदे ने। ये किस्मां मैं थोड़े सामने रखा और इस विच ये देखांगे आपां कि असी कित्थे खड़े हैं। इन्हां पंजां विच पहली श्रेणी, दूजी श्रेणी, तीजी श्रेणी, चौथी या पंजवें, प्रथम श्रेणी, पहली श्रेणी, इसनों वो इस तरह बयान कर देना। कुछ पूर्ण पुरख जो पूर्ण हो गए, ते पूर्ण कदों होंदा है मनुख जद पूर्ण नाल जुड़दा है। पूरा प्रभ आराधया, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। जितने चिर तक पूरे दी प्राप्ति नहीं, मनुख दा जन्म अधूरा है, जीवन अधूरा है, मरण भी अधूरा है। मरण इस वास्ते अधूरा है, तन ते खाक हो गया, राख हो गया, मन फिर जन्म लैण वास्ते तैयार हो गया। दूजा चौला, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए। भाई गुरदास जी कहिंदे ने कई जन्मां तो मन वासना वस होके बार बार शरीर धारण करदा रहे, चौला बदलदा रहे। शरीर दे मरण दे नाल वासना नहीं मरदी, शरीर दी मौत हंकार दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत लोभ दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत विकारां दी मौत नहीं। अगर होंदी तो जप तप दी लोड़ नहीं सी, सत्संग दी लोड़ नहीं सी, मरांगे ते हंकार भी मर जाएगा, मरांगे ते विकार भी मर जाएंगे, मरांगे ते लोभ भी मर जाएगा, क्रोध भी मर जाएगा। नहीं मरदा शरीर, मरदा है अहंकार नहीं मरदा। शरीर बुढ़ा हो जाता है, वासना बुढ़ी नहीं होंदी। शरीर बिरद हो जाता है, लोभ बिरद नहीं आता। लोभ सदा जवान लैंदा है, अहंकार सदा जवान रहिंदा है, विकार सदा जवान रहिंदा है, वासना सदा जवान रहिंदी है। अगर शरीर दी मौत ही वासना दी मौत आउंदी, मैं फिर दोहरावां, इस सत्संग दी लोड़ नहीं सी, कथा कीर्तन करन दी ते सुनन दी लोड़ नहीं सी, दान पुन जप तप दी लोड़ नहीं सी। शरीर दी मौत वासना दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत हंकार दी मौत नहीं है, शरीर दी मौत लोभ दी मौत नहीं है। शरीर बिरद हो गया, लोभ ते जवान है, बुढ़ा होंदा ही नहीं। शरीर ते बिरद हो गया, वासना ते बिरद होंदी नहीं, जवान है। शरीर बिरद हो गया, हंकार ते जवान खड़ा। तो ये जवान वासना अगला जन्म करा दे, अगला जन्म करा दे। शरीर मर भी जांदा है, वासना नहीं मरदी। शरीर मर जांदा है, लोभ नहीं मरदा। भाई साहब भाई गुरदास जी धन गुरु नानक देव जी महाराज दे उच्चारण कीते आसा दीवार दे श्लोक दा इंज खुलासा करदे ने, जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए,
फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए मरम को पाए। कोई विरला ज्ञानी इस रमज नू समझदा की

बंधन तोड़े, सारे बंधन टूट गए, बंधना दे चे नहीं जी रहा। हंकार दा बंधन आंदा, लोभ दा बंधन आंदा, वासना दा बंधन आंदा, सब तोड़ देते हैं, सब टूट गए। तन दी मौत ते नहीं हुई, हंकार दी मौत हो गई है। शरीर ते नहीं मरिया, वासना मर गई है। शरीर ते नहीं मरिया, लोभ मर गया है। बड़ी साधना कीती होनी है, बड़ा जप तप कीता होना है, अमृत वेले उठ के बड़ी ध्यान साधना कीती होनी है, उंज ते वासना नहीं मरदी, उंज ते लोभ नहीं मरदा, सिर्फ तन मर जांदा है। प्रकृति एक दिन तन नूं बुढ़ा कर देंदी है, मन नूं बिरद नहीं करदी। प्रकृति एक दिन तन नूं खत्म कर देंदी है, मन नूं खत्म नहीं करदी। जमना जीवना मरना प्राकृतिक है, प्रभु नाल मिलना पूर्ण होना प्राकृतिक नहीं है। प्रकृति तो बाहर आना है। तो हुण मैं फिर दोहरावां, इस चक्कर च ना पैणा। कई इस तरह सोचते रहिंदे ने, जवान बुढ़े होवांगे अमृत छक लवांगे। बुढ़े होंदे होंदे तक वासना होर जवान होवेगी। रोज रोज वासना जवान आउंदी है, बुढ़ी नहीं आउंदी। रोज रोज तन बुढ़ा होंदा है। रोज रोज लोग जवान हो रहे हैं, बलवान हो रहे हैं, रोज रोज तन कमजोर हो रहे हैं, निर्बल हो रहे हैं। रोज रोज हंकार ताकतवर हो रहे हैं, रोज रोज तन कमजोर हो रहे हैं। तन दी मौत वासना दी मौत नहीं है, तन दी मौत हंकार दी मौत नहीं है, तन दी मौत लोभ दी मौत नहीं है। बच्चे दा तन छोटा है, उम्र छोटी है, वासना छोटी है, लोभ छोटा है, हंकार छोटा है। जवान है, हंकार जवान हो गए, लोभ जवान हो गए, वासना बड़ी प्रबल जवान हो गई है, तन बुढ़ा हो गया है, कमजोर हो गया है। लोभ अहंकार वासना पहले नालों भी ज्यादा ताकतवर हो गई, शक्तिशाली हो गई, क्योंकि रोज रोज वासना शक्तिशाली होती है। रोज रोज हंकार दी ताकत वधदी है, रोज रोज लोभ दी ताकत वधदी है। इस वास्ते एक बुढ़ा मनुख जितना लोभी होंदा जवान नहीं होंदा, एक जवान मनुख जितना लोभी होंदा बच्चा तो उतना होंदा ही। ये भी मैं रोज रोज उम्र दे वधदियां लोभ बलवान होंदा, अहंकार बलवान होंदा, वासना बलवान होंदी है। आम लोगों का ख्याल है, सिर्फ आम लोगों का, धर्म का नहीं, महापुरुषों का नहीं, भाई बुढ़ा मनुख हो गया तो लोभ भी बुढ़ा हो गया होगा या मर गया होगा, वासना भी बिरद हो गई होगी या मर गई होगी, हंकार भी बुढ़ा हो गया होगा या मर गया होगा। भुलेख है, एवं भुलेख है, फिजूल भुलेख है। एक जवान के अंदर भी हंकार इतना बलवान नहीं होता जितना बुढ़े च होता है। आप सुन के हैरान होवोगे, सारी दुनिया के जड़े राजनीतिक लोग ने ना 97% बुढ़े ने, जो हुक्मरानी कर रहे ने, सारी दुनिया नू चला रहे ने, बिरद ने। कई तो ऐसे ने, चार बंदे उन्होंने पकड़ के कुर्सी ते बिठाते ने, चार लांदे ने बेचारे, आप बैठ भी नहीं सकते, हाथ कंबदे ने, पैर कंबदे ने, सिर कंबदा है, लेकिन हुक्मरानी दी पकड़ बड़ी प्रबल, हुक्म करन दी चाहत बड़ी प्रबल, अहंकार बड़ा प्रबल। समाजिक चौधरी, राजनैतिक चौधरी 97% बुढ़े होंदे ने। शरीर दे वधदियां, उम्र दे वधदियां अहंकार वध गया, लोभ वध गया, वासना वध गई है। इस वास्ते शरीर दी मौत कोई वासना दी मौत नहीं है, लोभ दी मौत नहीं है, अहंकार दी मौत नहीं। मन दी ए वासना फिर अगला जन्म करा दें। अवतार जिन्हां नूं असीं कहिंदे हां,

संतपणा की है। पैगंबर किसनों कहते ने, अवतार किसनों कहते ने, पूर्ण संत किसनों कहते ने, फकीरी चीस्त, ये सिर्फ दो शब्दां विच, दो बोलां विच इतना बड़ा सवाल। फकीरी चीस्त, फकीरी क्या है, संतपणा की है। गुरु नानक देव जी महाराज जवाब देंदे ने, इब्तदाए फकीरी फना अस्त, इंतहाए फकीरी बकास्त। किसे उच्चे आदर्श लई अपने आप नू निछावर कर देना, कुर्बान कर देना, मिटा देना, और हमेशा लई अमर तत् दी प्राप्ति कर लेना, बस इसे नू फकीरी कहते। यही संतपण है। इस सवाल जवाब में फिर थोड़े सामने रखा जन्म साखी चने। फकीरी चीस्त, फकीरी की है, फकीर किसनों कहते ने, संत किसनों कहते ने,

हस्त खेलत तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। मंदिर देच भक्ति करदे हां, प्रभु दे गीत गाउंदे हां, क्यों उठाए गए, क्यों बाहर कड्डे गए? क्योंकि शूद्र जाति दे सन, ते शूद्र जाति लई मंदिरां दा प्रवेश बंद सी। आप स्वयं कहंदे ने, हस्त खलित तेरे देहरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। हीनड़ी जात मेरी जात मराया, छीपे के जन्म मुको काहे को आया। भक्ति भाव विच भिजे गीत आप जुगारे सन, ते मंदरां विच जो कथा कीर्तन होंदा सी, उस दे जो सुनन दा आप दे अंदर शौक सी, लेकिन ब्राह्मणा दा जो व्यवहार सी, उस तो दुख तो के आप कहंदे ने, छीपे के जन्म मोको काहे को आया। हे प्रभु, तू छीबे दे घर मैनू जन्म क्यों दिता? क्योंकि भक्ति करन दा अख्तियार लोकी मैनू नहीं देंदे, मंदरां विचों धक्के मार के कढ़दे ने। लै कमली चलियो पलटाए, देहुरे पाछे बैठा जाए। आखिर अपना चदरा विछा के जिस दे उत्ते बैठा होया सी, उन्नू संभाल के समेट के मंदिर दे पिछवाड़े जा बैठा। आप दा ही वाक है, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे, भगत जना का देहुरा फिरे। जैसे जैसे वो प्रभु दे गीत गाउंदे ने, प्रभु विचलीन होंदे ने, वैसे वैसे मंदिर फिरदा है, और मंदिर दा जो मुख द्वार सी, उस दा मुंह नामदेव जी दी तरफ हो गया, मूर्तियां दा मुंह नामदेव जी दी तरफ हो गया, और पंडियां दी तरफ पिछवाड़ ला। फेर दिया नामे को देहुरा, पंडियन को पिछवाड़ ला। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा भी फरमान है, हंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम देव मुख लाया। ए मंदिर गौंडा देच अज भी मौजूद है, श्री सचखंड हजूर साहब तो गालबन 40 मील दी दूरी ते, औरंगाबाद रोड देते एक गौंडा नाम दा बहुत वड्डा तीर्थ है। इस औंडा नाम दे तीर्थ दे उत्ते ही श्री नामदेव जी महाराज ने ए प्रभु दे गीत गाए, ते आप नूं धक्के मार के बाहर कढ़िया गया। ए मंदिर इतिहासक मंदिर है, और कस्बे दा नाम औंडा है। महाराष्ट्र देच बेशुमार तीर्थां दे चों ए अस्थान भी तीर्थ सतल करके बहुत मशहूर है, और श्री नामदेव जी महाराज दा भी अस्थान इस मंदिर देच अज बनया है। भावें आप शरीरक रूप दे जद मौजूद सन, ता आप नूं धक्के मार के बाहर कढ़िया गया, लेकिन अज उन्हां दी मूर्ति मंदिर दे द्वार तो बाहर स्थापन कीती हुई है, और दूरों ही पुजारी आवाज मार देन, संत नामदेव दे दर्शन करो, संत नामदेव दे दर्शन करो। लेकिन ए अजूबा पृथ्वी ते मौजूद है कि मूर्तियां दा मुंह एक पासे है, मंदिर दा मुंह दूसरे पासे है। और ए अजूबा कहंदे ने श्री नामदेव जी महाराज करके होया, क्योंकि आप नु जब धक्के मार के बाहर कढ़िया गया, आप पीछे जा बैठे, तो मूर्तियां ने भी रुख

चंदन लीप आवे चाओ मत देख पुला विसरे तेरा चेतना आवे नो। इन्ना सब कुछ वेख के सिखा कदे भुल ना जाई। आ चार चीजा ने ध्यान विच रखियो। रब दे मार्ग उत्ते जान लग्या चौ चीजा की रुकावट है। सब तो पहला धन दौलत हीरे मोती जवाहरात जायदाद यह हंकार पैदा कर सकती। जिन्हों साहब ने कहा जोबन धन प्रभ तक है मद। पैसा धन दौलत हीरे मोती रुकावट पैदा कर सकते हैं, पर सात संगत जे कोई शब्द नाल जुड़े फिर यह चीजा माया रुकावट पैदा नहीं करेगी। एक संत होए ने जुप्पी दे तुकाराम, उन्होंने बहुत सारिया लिखता मिलदियां ने। वह कबीर पंथियों में अगे कबीर मार्ग ते होए, वह बड़े वड्डे साधना वाले भगत ते उन्होंने घर वाली धर्म पत्नी ओदी बंदगी उन्हां नालों भी ज्यादा। अमृत वेले बंदगी करके अद्धी रात तो अमृत वेले दिन चढ़न तक उन्हें भगती करनी। जदों थोड़ा दिन चढ़ा होना लोगों ने जगण लगना उन्हें अपने घर आ जाना, किरत कर्म अपनी फिर संभालनी गृहस्थियों वाली। दोमां जीआं ने पहले पैर 12 बजे तो लैके दिन चढ़न तक बंदगी करनी। एक दिन सवेरे बंदगी करके दिन दे चढ़ा नाल घर नूं वापस आ रहे सी, कहिंदे रस्ते विच किसे दा सोना डिग्गिया होया सी। जदों कोई सोने दा गहना मोहरे जांदिआं संत तुकाराम ने वेख्या, मन च आया मना इह वी रब दी माया है, किते सोना वेख के मेरे घर वाली दा मन ना भटक जाए। बीबियां नूं सोने नाल बड़ा प्यार हुंदा है। संत तुकाराम ने कहा इह किते सोने नाल भटक ना जाए। ते 2 कदम 10 कदम अजे ओह माई पिछे सी, संत तुकाराम रुके ते पैर नाल मिट्टी पाण लग पए। मिट्टी थले लुकोदा घरवाली दी नजर पै गई, एवें चुक लएगी। यह सोना फिर रुकावट बनेगा। जदों सोना कोल आ जाए बंदा फिर पहनदा है, जदों पहन लवे वह किसी नूं बखाउण दा भी चार रखदा है। जिन्नी देर वह कोई सोना पहनिया वेखे ना उन्नी देर पहनण वाले नूं सुकून नहीं आउंदा। वह फिर सोना पहन के बखावे विच पैंदा है, हंकार विच पैंदा है। इत्थे रुकावट हो सकती है। कहिंदे संत तुकाराम पैर नाल मिट्टी पा के उहनूं ढकण लग पए। 5-10 कदमां दा फर्क सी। इन्ने नूं उहनां दी धर्म पत्नी बराबर आ गई। उहने वेख्या नहीं कि की चीज सोना सी, किवें ढक रहे ने। इन्नी बंदगी संत तुकाराम नालों भी अगे लंघ गई। वह बंदगी वाली माई नूं सब कुछ अगे दिस गया। दूजे नूं पढ़न दी समर्था उहदे विच आ गई। उहने संत तुकाराम दा मस्तक वेख के पढ़िया ते हस के बोली, कहिंदी साई जी रहण दिओ, मिट्टी उत्ते मिट्टी पाउण दा की फायदा। उन्हें कहा तेनों किवें पता लगा मैं सोने ते मिट्टी पा रहे। मस्तक पढ़ के बोली, रहन दियो मैं चेहरा पढ़ लिया, मिट्टी उत्ते मिट्टी पाउण दा की फायदा। संत तुकाराम दी अखां भर आईयां, मेरियां अखां नाल धरती ते पिया सोना भी अजे सोना दिसे। तू बंदगी चगे लंघ गई, तेनों सोना भी मिट्टी लगदा। सा संगत दे ओ बंदगी है जिहड़ी सिख दी सुरत नूं फिर इत्थे लै जांदी है कि वह सोना धन दौलत पदार्थ तो उपर उठ जाता, वो कोल होवे भी हंकार नहीं करेगा। ओनू महाराज ने कहा जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर पै नहीं जाके, कंचन माटी मन। वह सोने नू भी मिट्टी मन, कंचन माटी मन ने निंदया ने उस्तत जाके। ओदे मन च आउंदा ही नहीं है, निंदया का गुस्सा नहीं आता, उस्तत दी उहनूं कदे हंकार नहीं आउंदा कि उस्तत हो रही है।

पल जोग नानक नाम सुखाला नानक नाम सु भाई नाम कलयुग विच सुख देण वाला है। ये कलयुग दा प्रताप इन्ना वध गया है। तुसी पढ़े लिखे सज्जन बैठे हो, धन दौलत पैसा पदार्थ लोकां नूं सुख नहीं दे रहा। आ तुहाडे सामने हुण फिर थोड़े दिन पहला अरबां दी जायदाद छड्ड के बॉलीवुड दा उह बंदा आत्महत्या कर गया जिन्हों साध संगत सिद्धार्थ शुक्ला कहिंदे। धन दौलत पदार्थ ओदा हुण रीजन भावें होर कुछ भी निकले, ये संसार विच वड्डे वड्डे लोकां नूं वड्डियां चिंतावां ने। जे हुण ओह डॉक्टर कह रहे जी उहनूं अटैक हो गया, कदी चिंता नाल। जिहड़ी गल साहब ने सानू लिख के समझाया कि जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, ना माया बहुत ज्यादा होनी चाहीदी है ना माया बहुती घट होनी चाहीदी है। जिहदे कोल नामी होवे ओह भी चिंता विच है, जिहदा पूरा ना पवे ओह भी बेचारा चिंता विच है, जिहदे कोल बहुत ज्यादा ओह तुहाडे नालों भी ज्यादा दुखी होएगा। जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता। वो भटकदा फिरदा कि बिल किवें देने ने, फीसां किवें भरनियां ने, ते महाराज सुखी कौन है। फिर सतगुरां कहा दोहूं बेवस्था ते जो मुक्ता, जिहदे कोल ना बहुती है ना थोड़ी है उहदे खर्चे पूरे चल रहे ने, परिवार वे तंदुरुस्ती, ओ शुकराना करे सतनाम श्री वाहिगुरु। क्यों? ओ दोमा चीजा तो मुक्त है। दोहूं व्यवस्था ते जो मुक्ता, सोई सोहेला पाली है। भाई ओ सुखी है जेदे कोल ना बहुती ते ना थोड़ी, ओदे खर्च पूरे हो रहे।

दर्शन दो। उस वक्त सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने कहा, मैं तेरा गुरु नहीं, जिहड़ा तेरा गुरु है तू उसे दे दर्शन कर जा। गुरु किसे नूं होर धारण करदा, दर्शन साडे चाहुंदा। जे साडे दर्शन करने ने, वचन करने ने, तां ओह नकली गुरु नूं छड्डना होवेगा ते फिर गुरु वाला बाणा अमर छक, फिर तैनूं असीं दर्शन दे सकदे हां। सो इस तरह वह नकली गुरु नूं मन्नण वाला बंदा आप आके मैनूं इह गल सुणा के गया उत्थे, भई महाराज ने किरपा तां कीती है पर अमर छकण दा हुक्म कीता। मैं कहा फिर छको, जां उहनां दी खुशी इसे गल ते ही है। कलकि धर महाराज दे सुभाव नूं जाण लेना आपां हुणे सरवण कीता सी। महाराज सच्चे पातशाह बहुत, जिस तरह कह लो भी जिवें हुण भाई साहब ने प्रसंग सुनाया सी, सैकटरी साहब भी कहिंदे सी प्रसंग जी करदा सुनी जाइए सुनी जाइए, क्योंकि जिथे एक कथा करन वाला कथा करदा हुंदा वो पहला एक स्रोता जरूर हुंदा। बाबा करतार सिंह जी खालसा नूं असीं पुछिया सी, कथा सिखण दा सौखा तरीका दसो, कहिंदे सुनी जाओ सुनी जाओ सुनी जाओ। बस जिन्नी कथा सुनी जाओगे उन्ना ही कथा वाचक वधिया बनोगे। सुनिया सिद्ध पीर सुर नाथ, सुनिया अगली तीजी पौड़ी सत संतोख ज्ञान, सारिया चीजा सानू सुनन दे नाल प्राप्त होंगे। जिन्ना असी कीर्तन सुनते, कई देखे बच्चे, एक बच्चा कनेडा दे विच सी, वो कीर्तन करदा रागियां नाल जोड़ी बजाउण बैठ जांदा सी, निका जा बड़ी सोहनी जोड़ी उहने बजाउणी। सारिआं ने पुछना तू तां कितों सिखिआ ही नहीं। मैं भी पुछिआ तू कितों सिखिआ, हुण तां उह 20-22 साल दा 25 साल दा हो गया। कहिंदा जदों रागी जिथे आउंदे सी मैं सामने बैठ के बस जोड़ी वाले वल देखी जांदा सी किवें बजाउंदा है। भाई रागी सिंह सारे ही जाणदे ने उत्थे कनेडा दे विच, कैलगिरी चैप जंगी सिंह हो, तो इस करके वह आप भी बड़ा सोहना गाँवदा। जदों कीर्तन करदा तो जी करदा सुनी जाइए, आवाज भी बड़ी रसदायक। एक पिछला कर्म भी हुंदा, बाकी देख के सुन के ध्यान दे नाल सुनदे सुनदे एक चीज अंदर वस जाती है। जिवें कथा सुनी गए सुनी गए सुनी गए अंदर कथा वस जाती है। कीर्तन सुनद्या सुनद्या अंदर लय ताल का ज्ञान होना शुरू हो जाता। इस प्रकार जदों आपने हुण ये जिहड़े बचन भाई साहब ने सुनाए ने प्रेम दे बचन, ये प्रेम दे बचना नूं सुन के अंदर प्रेम पैदा हुंदा। महाराज सच्चे पातशाह ने बख्शिशां कीतियां ने। सारे जने ये रोज पुछदे ने कि प्रेम किवें पैदा होवे, सिखी किवें आवे, जां जिहड़ियां जिहड़ियां असीं चाहुंदे आ साडे च शुभ गुण किवें आउण। मुकदी गल मुकाइए, तुसीं जो कुछ भी मंगदे हो जो कुछ भी चाहुंदे हो सारा कुछ नाम दे विच ही है। कदे कदे आपां बैठे संगत साडे कोल दो दो घंटे तीन तीन चार घंटे तक गल्लां बातां, आ किवें आ आओ किवें आ आओ किवें आ आओ किवें आ, मैं जवाब दे ही जांदा, पुछी जांदे जवाब दे ही जांदा पुछी जांदे ने, पर अखीर मेरा एक ही उहनां नूं सलाह हुंदी सारिआं नूं वी आपां नूं बैठिआं नूं साध संगत तीन चार घंटे हो गए। जे इहदे नाल आपां तीन चार घंटिआं च बोल बोल के हौली हौली दो सुखमनी साहब दे पाठ कर लैंदे ना, उहदा लखां करोड़ां गुणा ज्यादा फायदा हो जाणा सी। इस करके जिहड़ी गुरु की बाणी की कथा है, कथा की उपमा गुरां ने कीती है, सुन हर कथा उतारी मैल, किन्नी क मैल उतरी, कहिंदे महा पुनीत भए सुख सैल। पवित्रता तो बड़ी हुंदी है, पर ये तां हुंदी जे आपां
ਹੁਣ ਕਥਾ ਵੀ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਥਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੋਲਣੀ ਹੈ।

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी
2: जी जंत सब तो दुपायक वेख परसन आया लब लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पहाया कह

0: तुदवाच कुड़ महला पहला।
1: सच था पर जानिए जर जे सच्चा होए, कूड़ की मल उतरे तन करे हशा धोए। सच था पर जानिए जा सच तरे प्यार, नाउ सुन मन रसी है।

साम कहे सितंबर स्वामी सच में आशय साच रहे सब को सच समावे। ऋग कहे रहे भरपूर राम नाम देवा में सूर नाय लय प्रच जाए नानक मखन त्रपाए। जज मैं जोर चली चंद्रावल कान कृष्ण जादू भया पार जद गोपी लय आया बिंद्रा बन में रंग किया कल में बेद अथर बन हुआ नाव खुदई अलहो भया।

0: सुनी अरदास स्वामी मेरा सर्व कला बन आई प्रगट पाई सगले जुगे अंतर गुरु नानक।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: 1550 KRPI Radio ते चल रहा है लाइव फ्रॉम गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब स्कॉट रोड सरी।

और जिन्ने मर्जी जतन कर लो, अवर जतन कर रहे बहुत तेरे, बहुत सारे जतन कीते, जप तप जग दान जो मर्जी करा लो सत्संगियो, इन्हां दी तिल जिन्नी कीमत नहीं जानी, तीन तिल नहीं कीमत जानी, तिल जिन्नी भी उस परमात्मा दे दर ते इन्हां दी कीमत नहीं पैंदी। विश्राम दे के मेहर करदे हन गुरु अर्जन।

0: और बहुत कुछ नवा बना देता। उन्हें अथाव थे दान की था, बड़ी उसकी महिमा भी हुई। दास वक वक शहरां तो विचरदा होया, जद फ्रीमोंट पहुंचे सुते सित उत्थे उसका मिलना हो गया। एक अंदाजे के मुताबिक महीना हो गया सी, दास लॉस एंजलिस होर कई शहरां तो होके उत्थे पहुंचे। मैनू कहन लगा अपना ते हुण यकीन नहीं रह गया, गल खत्म। मैं कहा हद हो गई, हजारां डॉलर उस दिन आके खर्च किए ने तुसी, पांडे नवे बनाए, कारपेट नवा तुसी बिछा दिता, इतनी रौनक, पाठियां नू तुसी खुली माया दिते, लंगर तुसी ओ चलाए जो ब्याह शादियां दे सिलसिला नहीं बनता। गल की हो गई? कहले कि मस्कीन जी आपां मुकदमे च हार गए, साडा निश्चा टुट गया, भरोसा ही टुट गया। इन्नी जिहा गल ना टुट, इन्नी जिहा गल ना। जिसका भरोसा बजे है खतरे च है, कोई तोड़ के रख सकता है। कोई दुख भरोसे नू तोड़ के रख दे, कोई लेक्चरार, कोई कथाकार उस तो विपरीत गल कह के परमात्मा दे भरोसे नू तोड़ के रख सकता है, गुरु दे भरोसे नू तोड़ के रख सकता है। और भरोसे टूटते मैं देखे, ये भी मैं अर्ज करते, वो अपने आप नू खतरे समझे। जिन्ने चिर तक भरोसा भावना नहीं बनता, भगती नहीं बनता, भगत दा भरोसा नहीं टूटता, भगत ते भगवान दा रूप हो जाता, बूंद सागर हो जाती है। हुण जो है उसका भरोसा टूटे हो ते आप परमात्मा वर्गा हो गया। हर वक्त महारस महानंद उसकी दुनिया, वो गीत का रूप हो गया, संगीत का रूप हो गया, आनंद का रूप हो गया, ज्ञान का रूप हो गया और समदृष्ट हो गया। हुण जिथे तक वो वेखदा है परमात्मा नू वेखदा है, और जिथे तक सुनदा है जो बोलत है मृगमीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं हो, ए प्रभु जितने पंछी पे बोल देन सब तेरी आवाज। हुण ते मैनू इंज लिखदा है, ए भी तैनू ही जपदे पे ने, और कुछ नहीं। ये सारियां आवाजां हे प्रभु इहदे च भी तू है, ये सारे रूप इहदे च भी तू है, ये अवस्था बन जाती। गुरु नानक देव जी महाराज कहते, जो बोलत है मृग मीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं होर। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की मैं समदृष्टि थोड़े सामने रखा, समाप्ति करा, समा हो गया। महाराज कहते, कतो हूं सुचेत होए के चेतना को चार कियो, कतो हूं अचिंत होए के सोवत अचेतो। श्री मुखवाग पातशाही दसवीं अकाल उस्ताद। हे प्रभु किधरे ते तू बड़ा सावधान सुचेत है, बड़ा स्याणा है। कतहु सुचेत होए के चेतना को चार कियो, तू अपनी चेतना नू चार कहिंदे ने, बड़े सुंदर बड़े सोहणे सोहणे गुणा नाल संवारे शिंगारे। कतहु अचिंत होए के सोवत अचेतो, किधरे तू बिल्कुल मूड अचेत, कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। हैरानगी हैरानगी। कतहु भिखारी होए के मांगत फिरत वेक, कहूं महादान होए के मांगे ओ धन दे तो। हे प्रभु कमाल दी गल, किधरे तू मंगता बनया है, भिखारी हाथ फैलाया टुकड़ा टुकड़ा मंगता पे। एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज विडाणा। गुरु रामदास, हे चोजी पातशाह किधरे तू दाता बनया है, किधरे भिखारी है, सब तेरे ही चोज ने। समदृष्टि। कतहु भिखारी होए के मांगत फेरत भीक, कहू महादान होए के मांगे ओ धन दे तो। कहू महाराजन को दीजत अनंत दान, कहू महाराजन ते छीन चित ले तो। कहू बेद रीत कहू तांस्य विपरीत, कहू त्रिगुण अतीत कहू सरगुण समेत हो। इन्हां सैकड़े सवैया दे चो दो चार मैं थोड़े सामने रखा, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, क्योंकि दसवें पातशाह नूं बहुत घट समझिया गया, बहुत घट पढ़िया गया, बहुत घट सुनिया गया। इस वास्ते मैं थोड़े सामने रखदा पिया। सिंगापुर विच एक सज्जन सिंधी मैनूं कहण लगा, गुरु नानक बड़े मीठे गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह गुरु तो हैं पर बड़े कड़वे हैं, बहुत कड़वे हैं, हमारा तालमेल नहीं बैठता। सिद्धे लोग मैं उन्होंने स्वभाव कह दिता, जी इतने कड़वे ना होंगे तो भारत विच हिंदू धर्म ते रहना ही नहीं सी, खत्म हो जाना सी। कवि संतोख सिंह जी कहते ने, छाए जाती एकता अनेकता, बिलाए जाती होवत कुचीलता, कतेबन कुरान के, पाप ही परपक जाते, धर्म दशक जाते, बरन गरक जाते, सहत विधान की, देवी देव देवरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मित जाति कथा वेदन पुराण की, श्री गुरु गण गोविंद सिंह पावन परम सूर, मूर्त ना होती जो पे करना निधान की, ऐसी बख्शिश भरी मूर्ति ना होती, गीता पुराण वेद खत्म हो जाने सन, केवल कुरान रहनी सी। जनेऊ तिलक मंदिर ठाकर द्वारे खत्म हो जाने सन, एक कोई मस्जिद रहनी सी। इति धन गुरु गोविंद सिंह जी की करामात, उन्हां दी मेहरबानी, उन्हां दी कुर्बानी, उन्हां दी तपस्या, उन्हां दी देन। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की समदृष्टि नूं नहीं देखिया गया, क्योंकि असी सुनाया नहीं, असी समझाया नहीं। साहिब कहिंदे ने, कहूं जच्छ गंधर्व उरग, कहूं विद्या दल, कहूं भय किन्नर पिशाच, कहूं प्रेत हो। हे प्रभु, किधरे तू महाकविए, किधरे तू महासंगीतकार, बहुत बड़ा संगीतकार। वही गल जो गुरु नानक कहिंदे ने गुरु गोविंद सिंह, पर हे प्रभु किधरे तू भूत प्रेत है, पिशाच है, शरीर ही तेरे कोल नहीं, रूह भटक दी पई। कहू जच्छ गंधर्व उरग, कहू बेदयादर, कहू भय किन्नर पिशाच, कहू प्रेत हो, कहू होए के हिंदुआ गायत्री को गुप्त जप्यो, कहू होए के तुरका पुकारे बांग देत हो। हे प्रभु किधरे तू हिंदू है, तू ही है और कोई नहीं है, तू ही है। गुफा विच बैठ के गायत्री दे मंत्रां दा जप पिया करदा, पर हे प्रभु किधरे तू मुल्ला है, तुरक है, मुरारे ते चढ़ के बांग पिया देना। गुफा विच बैठ के मंत्रां दा जप करन वाले हे प्रभु तू ही है, मुनारे ते चढ़ के बांग देन वाले हे प्रभु तू ही है। कहूं को बकाव होए पुराण को, पढ़त मत कतहूं कुरान को, निदान जान लेत हो, कहूं बेदरीत, कहूं तांसं विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत, कहूं सरगुण समेत हो। हे प्रभु मैं देखदा किधरे तू पुराणा दा पंडित है, बड़ा ज्ञानी है, बड़ा ज्ञाता है, पर किधरे तू कुरान दा हाफिज है, तू ही है और कुछ नहीं, तू ही है। इना सवैयां दी लड़ीवार जे मैं व्याख्या कीती, समा अपने ढंग नाल चला जांदा है। एक सवैया होर रखदे आं थोड़े सामने, कवित। कहूं गीत के गवैया, द्वापर दे चली गई बिरती धन गुरु गोविंद सिंह। कहूं गीत के गवैया, कहूं बेन के बजैया, हे प्रभु किधरे तू मधुर गीत गाना है ते मुरली बजाना, बांसुरी बजाना धन गुरु गोविंद सिंह। कहूं गीत के गवैया, कहूं बेन के बजैया, कहूं नृत्य के नचैया, कहूं नर को आकार, किधरे आकार तेरा पुरुष दा बड़ा सोना, नृत्यकार है, बांसुरी बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। कहूं वेद बानी, कहूं कोक की कहानी, कहूं राजा कहूं रानी, कहूं नार के प्रकार, पर हे प्रभु किधरे तू नारी दी तरह, नर दी तरह नहीं है, स्त्री दी तरह, पुरुष दी तरह नहीं है। किधरे वेद बाणी विद्या नाल भरी हुई, ज्ञान नाल भरे हुए ग्रंथां दीआं कहानियां तू कर रहे हैं, पर किधरे कोक की कहानी, आपदी ज्ञातली अर्ज करां, कोका पंडित ने काम सूत्र एक ग्रंथ लिखे है। उस वक्त दे कुछ नैतिक पुरुषा ने सैने पुरुषा ने कहा सी तू की लिख रहे है, तू ऋषि है, तू संत है, काम ते लिख रहे है। उन्हें आख्या जे क्रोध ते लिखिया जा सकता है ते बोलिया भी जा सकता है, हंकार ते लिखिया जा सकता है ते बोलिया भी जा सकता है, लोभ ते लिखिया जा सकता है ते बोलिया भी जा सकता है, मोह ते लिखिया भी जा सकता है ते बोलिया जा सकता है, काम ते क्यों नहीं लिखिया जा सकता ते क्यों नहीं बोलिया जा सकता। ये उदी दलील सी। आखिर जद भी किधरे मनुख गिरदा है ते उन्हां पंजा करके ही गिरदा है, और जिस करके ज्यादा गिरदा है अधिक गिरदा है उदी जानकारी मनुख नूं होनी चाहिए, होनी चाहिए। उन्हें इतना वड्डा ग्रंथ लिखिया काम सूत्र, हुण आप सुन के हैरान हो गए। उस दे जिहड़े कुछ पहलू दसम ग्रंथ विच मिलदे ने, और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदे ने 24 अवतारां दी जो मैं कथा लिखी है मैं अनुवाद कीता है, टीका कीता है, ये मेरे अपने ख्याल नहीं। दसम कथा भागवत की पाखा करी बनाए, अवर वासना नाहे प्रभ धर्म जुद के चाहे। मेरी कोई वासना नहीं, बस मैं ते धर्म दा युद्ध करन वाला, प्रभु नाल जुड़न ते जोड़न वाला, पर मैं प्राचीन धर्म ग्रंथां दा ये टीका कीता है, अनुवाद कीता है, ताकि मेरे खालसे नूं जगत नूं पुराने धर्म दा, पुराने समाज दा, पुराने लोकाचार दा पता होवे, ज्ञान होवे। सहन सरदान दे इंद्र रोवाया पर सराम रोवे घराया, एक शब्द है गुरु नानक देव जी मां। ये परशुराम कौन सी, इंद्र कौन सी, ये जनमेजा कौन सी, अजे सरोवे बिखिया खाए, ऐसी दरगे मिले सजाए, ये सारे कौन सन। इति पुराण पढ़ने पैणगे, पुराणक प्रसंग पढ़ने पैणगे, जानना पैगा। बहुत कच्चे दिल दिमाग दे बंदे सिख जगत विच अपने आप नू रैबर मनन लग पए ने, ओदे नाल सिख धर्म संकीर्ण होके रह गए, जबकि इस तो वड्डा होर कोई विशाल धर्म नहीं सी। एदा सबूत धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, सारे भगत ते बैठे ने, बांग देण वाला भी बैठा है ते मुरली दी तान छेड़न वाला भी बैठा है, सब कुछ मौजूद है। खैर मैं लमकावां ना, सतगुरु कहिंदे ने मेरे ख्याल नहीं ने, मैं टीका कीता है, अनुवाद कीता है। क्यों? ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण नूं पढ़ांदा सी, शूदर नूं नहीं। फिर ब्राह्मण जिहड़ी विद्या पढ़ांदा सी संस्कृत सी बड़ी बेखम, वह हुण लोक भाषा नहीं रह गई सी, किसे वक्त सी, किसे वक्त सारी संस्कृत बोलदे सन। समां दे नाल भाषावां बदलदियां, अज पंजाबी दा रूप भी नहीं रह गया, पंजाबी दे बहुत सारे अल्फाज होर दे होर आ गए, ये भी मैं अर्ज करते हैं। लहिंदी पंजाबी, चढ़दी पंजाबी अलग अलग है। पाकिस्तान दे विच पंजाबी बोलदे ने, साडी पंजाबी नालों भिन्न हो गई है, बिल्कुल भिन्न हो गई। मैनू चंगी तरह याद है, श्रोमणी कमेटी ने एक दफा दास की सेवा लाई ननकाणा साहब गुरु नानक देव जी महाराज के गुरपुरब ते, वे उत्थों की मंग आई है टीवी ते प्रोग्राम जाना है पर उर्दू दे च कथा करनी है, लेक्चर देने है, भी तुसी तिन्ने दिन गुरुद्वारे च उर्दू च बोलना, ठीक। और उस सेवा मैं खुशी नाल कबूल की, मैं कहा बड़े दिनों बाद सतगुरु दे उस पावन स्थान दे दर्शन नसीब होणगे। बड़ा भारी इकट्ठ राय बुलार दी जिहड़ी संतान भट्टी खानदान, वो भी सारे बैठे सन। रात नूं भी दास हाजरी भरदा हुंदा सी, वो जिहड़ी भट्टी खानदान है राय बुलार दी होर सारे, वो कहिण लगे रात नूं तुसीं पंजाबी च ही बोले, चंगा। रात नूं मैं पंजाबी च बोलिया, मेरे कमरे चो मुसलमान वीर आ गया, भई असीं ते तुहानूं हथ जोड़ के आखिया सी, अरज़ोई कीती सी पंजाबी च बोलो, तुसीं पंजाबी च नहीं बोले। मैं कहिंदा मैं पंजाबी च बोले आ। कहिंदे ये कीड़ी पंजाबी है, हुण लहिंदी पंजाबी बोलदे, ये कीड़ी पंजाबी, कहिंदे साडे पल्ले ते नहीं कुछ पिया। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਉਰਦੂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ, ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਭਾਵੇਂ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ 51 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੜਖੜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਧਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੇਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਇਸੇ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਬੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਕੋਕਾ ਪੰਡਿਤ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਲੋਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਭ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੂਕਰ ਜੈਸਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਜੈਸਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਉਂ ਕੂਕਰ ਹਰ ਕਾਇਆ ਤਾਵੇ ਦੇ ਦਿਸਦਾਏ, ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਭਾਖਾ ਭਖ ਸਭ ਖਾਏ, ਭਇਓ ਲੋਭ ਸੰਗ ਹੋਰਾ। ਲੋਭ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਲਕਾਇਆ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਹਲਕਾ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪਾਗਲ ਕੁੱਤਾ। ਲੋਭ ਤੇ ਪਾਗਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਭ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਨਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਵੈਸ਼ਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਤ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹੂੰ ਗੀਤ ਕੇ ਗਵਈਆ, ਕਹੂੰ ਬੇਨ ਕੇ ਵਜਈਆ, ਕਹੂੰ ਨਿਰਤ ਕੇ ਨਚਈਆ, ਕਹੂੰ ਨਰਕੋ ਆਕਾਰੋ, ਕਹੂੰ ਬੇਦ ਬਾਣੀ। ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿਆ ਪੜਦਾ, ਕਹੂੰ ਕੋਕ ਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਿਆ ਪੜਦਾ, ਕਾਮਸੂਤਰ ਪਿਆ ਪੜਦਾ, ਕਾਮਸੂਤਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਰਾਮ ਦੇ ਗੀਤ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਾਮ ਦੇ ਗੀਤ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਹੀ। ਕਹੂੰ ਬੇਦਬਾਨੀ, ਕਹੂੰ ਕੋਕ ਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਹੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹੂੰ ਰਾਣੀ, ਕਹੂੰ ਨਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋ, ਕਹੂੰ ਬੇਨ ਕੇ ਬਜਈਆ, ਕਹੂੰ ਦੇਨ ਕੇ ਚਰਈਆ, ਕਿਧਰੇ ਗਊਆਂ ਪਿਆ ਚਾਰਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਹੂੰ ਬੇਨ ਕੇ ਬਜਈਆ, ਕਹੂੰ ਦੇਨ ਕੇ ਚਰਈਆ, ਕਹੂੰ ਲਾਖਨ ਲਵਈਆ, ਕਹੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਹੋ, ਸੁਧਤਾ ਕੀ ਸਾਨ ਹੋ, ਕੇ ਸੰਤਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਹੋ, ਕੇ ਦਾਤਾ ਮਹਾਦਾਨ ਹੋ, ਨਿਰਦੋਖੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਇਤਨੇ ਰੂਪ, ਇਤਨੇ ਰੂਪ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਈਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ, ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ। ਇਤਨੀ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਉਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਫਕੀਰ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੇਖੁਦੀ ਮੈਂ ਹਮ ਤੋ ਤੇਰਾ ਦਰ ਸਮਝ ਕਰ ਝੁਕ ਗਏ, ਅਬ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਵੋ ਕਾਬਾ ਥਾ ਯਾ ਬੁਤਖਾਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਖੁਦੀ ਮੈਂ ਹਮ ਤੋ ਤੇਰਾ ਦਰ ਸਮਝ ਕਰ ਝੁਕ ਗਏ। اب خدا جانے وہ کعبہ تھا یا بت خانہ. یہ رشیاں نالوں گھٹ گل نہیں ہے, برہم گیان دی شکرتا نو چھوندی ہے. پر دھن گرو نانک دیو جی مہاراج کہندے نے اکثر بھروسہ ڈول جاندا ہے, اس واسطے ارداس ہے ڈولن تے راکھو پربھو نانک دے کر ہاتھ. اول تے کوئی برلا ہی سندا ہے سروتا سننا, سنیا ہوا اگر واقعی من نے من لیا سنیے منیے, نہیں تو کی سنیا منیا ہی نہیں تو کی سنیا. میں ایک دفعہ پھر دوہراوا, کھادا ہوا بھوجن جو شریر دے وچ رہ جاندا ہے وہی خون بنتا ہے, سنیا ہوا گرو دا بچن جو من من لیندا ہے وہی من دا حصہ بنتا ہے, ورنہ نہیں بنتا, نہیں بنتا. وہ بھروسہ بن جاندا ہے, وشواس بن جاندا ہے. پر یہ منک خطرے چ ہوئے گا, بھروسہ ڈول سکتا ہے, وشواس ڈول سکتا ہے. سندا رہا مندا رہا تے بھروسہ ودا گیا ودا گیا. اگر یہ بھاونا بن گیا بھگتی بن گیا, ہوں یہ شریر دے ٹکڑے ٹکڑے تے ہو سکتے ہیں, تو بھروسہ نہیں ڈولے گا. جو کچھ سرو نے کیتا ہے دھن گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے چرنوں چ ارداس بنے ہے, سدگرو تھوڑا سنیا ہوا منن تک پہنچاوے, مننا دڑھ بھروسہ بن جائے, وشواس بن جائے, تے وشواس بھگتی بن جائے, بھاونا بن جائے. سنیے منیے من کیتا باؤ انترگت تیرت ملاؤ, یہی اندر دا تیرت ہے, سارے پاپا نو دول دینا. ماگ پنیت بھائی تیرت اندر جانے, یہی اندر دا تیرت ہے, سارے دکھ مٹ جاندے, سارے پاپ مٹ جاندے. صاحب اس طرح دی نرملتا پویترتا تے آنند آپ جی دی جھولی چ پاون. واہگرو جی کا خالصہ.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ 1550 AM. ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ, ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ 1550 AM. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ.
3: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕੈਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ. ਫਰੂਟੀ ਕੈਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 Street. ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ. ਲਾਲ ਗੰਡੇ 25 ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੈਗ 1898 ਦਾ, ਪੀਲੇ ਗੰਡੇ 50 ਪਾਉਣ ਦਾ ਬੈਗ 2099 ਦਾ, ਬਿਨਾ ਬੀਜ ਵਾਲਾ ਹਦਵਾਣਾ 68 ਸੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਡ, ਅਤੇ 4 ਪਾਉਂਡ ਇੰਡੀਕਨ ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ 3.99 ਦਾ ਬੈਗ.
4: Family Care Pharmacy.
5: پورے BC وچ ہومیوپیتھک دوائیاں چ نمبر ون.
4: اینا کولو تسی ہر طرح دے وائٹامن سپلیمنٹس, ہربلز اتے ہومیوپیتھک پروڈکٹس لے سکدے ہو.
5: ہر طرح دے نیچرل ہیلتھ پروڈکٹس, کمپریشن سٹاکنگز, آرتھوپی پروڈکٹس وی لے سکدے ہو.
4: ہون موبیلٹی ایڈ رینٹ جا بائی وی کر سکدے ہو.
5: فری بلسٹر پیکنگ تے ڈیلیوری دے نال نال ہر طرح دے گورنمنٹ تے پرائیویٹ کلیمز وی لیندے ہن.
6: 3 locations ٹو سرو یو, سری ڈیلٹا اینڈ وائٹ راک,
4: جا کال کرن ایٹ 604-581-1900.
2: پنجاب فوریکس گگن سنگھ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ. 6043491313 ਯੂਨਿਟ 103-8840-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, 6043491313, 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ, ਦਾਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ.
7: ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
8: ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੀਅਲਟਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜੋ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇ. ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲਟਰ ਹਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ, ਜੋ ਆਪਣੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਰੀਮੈਕਸ ਦੇ ਟਾਪ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਰੀਅਲਟਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ.
7: ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਗੇ. ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ
8: ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ ਨੂੰ
7: 604-351-5111 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ. 604-351-5111 ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਾਦ.

হাতে যুগ যুগ এক হয়ে। সংসার দী উৎপত্তি রচনা তে গর্দিশ দে সম্বন্ধে যে যোগীয়া নে জগত নু বিচার দিতে নে उस संबंध साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जगत नू विचार दे रहे ने ते जोगिया नू समझा रहे ने। प्राचीन समय तो एक कहावत चली आ रही है कि मादा प्रकृति युक्ति दे नाल प्रसूत होई ते उस तो तीन शक्तियां ने तीन चेलिया ने जन्म लिया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज उन्हां दा हवाला दे के फिर अपनी विचार जगत ते जोगियां दे सामने रखदे ने। एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवा, जुगती दे नाल व्याई परसूत होई ए माया ए मादा ए प्रकृति ते फिर बने तिन चेले परवान। परमाणिक तीन चेलियां दा सिरमोर तीन देवतियां दा जन्म होया जिन्हां दे नाल लकब जुड़े कि एक संसारी है, एक संसार दी पालना करन वाला है ते एक परले करन वाला है। एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। इत्थे तक विचार जगत दी है, जोगियां दी है, संसार दी है। और इस संसार दी विचार नू सामने रख के मेरे पातशाह फिर अपनी विचार अपने ख्याल अपना जवाब जगत ते जोगियां दे सामने रखदे ने। इतनी गल ते स्पष्ट है कि जोगियां दी पकड़ दे च एक गल आई कि शक्तियां तीन ही ने ते किरिया सिर्फ तीन तरह दी हो रही है। जीव जम रहे ने, जीव टिक रहे ने, जीव मिट रहे ने। ग्रह नक्षत्र सूरज चंद तारे बन रहे ने, टिक रहे ने, मिट रहे ने। पशु पंखी जन्म ले रहे ने, टिक रहे ने, फिर मिट रहे ने। ए नियम तीन तरह दा जन्मना जीवना ते मिट जाना सारयां ते लागू है और सारयां दी बकायदा अपनी उम्र है। तीन चेले परवान परमाणिक ए तीन चेले ने। दरअसल तिन्ना दी ही गिणती करीबन करीबन सारे विद्वाना ने प्रकृति दे संबंध च कीती है। उन्हां ने प्रकृति दे गुण भी तीन मन्ने, रजो तम सत। शरीर भी तिन्ना दा जोड़ है, मन है और अस्थूल मादा है शरीर ते फिर आत्मा है। एक नू भी अलग कर देईए ते होंद कायम रखनी बहुत औखी हो जांदी है। आत्मा है, मन है, शरीर है। समय दियां हालतां भी तिन ने, माजी हाल मुस्तकबिल भूत भविष्य वर्तमान। इसे तरीके नाल देखिया जाए जो शरीर देच जीवन देच चल रही चेतना है ओदियां हालतां भी तिन ने, जागृत स्वपन सखोपत। ते फिर असी देखदे हां कि जो कुछ जगत देच हो रहा है ओदेच भी क्रियावां तिन ने। जीव जम रहे ने, जीव बन रहे ने और उन्हां दी पालना हो रही है, टिक रहे ने, फिर मिट जांदे ने। जोगियां ते कुछ आम प्राचीन संतां दे मन दे ख्याल आया जो जन्म दे रहा है हो ही नहीं सकदा कि ओही मार रहा है, क्योंकि उन्हों मारन दा फिर की प्रयोजन हो गया, क्योंकि जन्म उसने दिता है। जिसने जन्म दिता है मारन दा सवाल नहीं पैदा होंदा। तो जन्म कोई होर दे रहा है, परले कोई होर कर रहा है ते फिर होर पकड़ दे चाई गल पालना कोई होर कर रहा है। और ये तीन शक्तियां वख वख ने।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼। ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਰ ਲੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਰ ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਅਖੌਤੀ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਰਥ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਆਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਰਚੈਤਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਚੈਤਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਲਾ ਪੈਣਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਸਨੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਨੇ। ਪਾਲਣਾ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਧਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕਸ਼ਮੀ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪਦਾਰਥ, ਵਸਤੂ, ਸੰਪਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਅਤਿਅੰਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਤੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨਾ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਖੂਬ ਪੂਜਾ ਹੋਈ, ਖੂਬ ਮੰਦਰ, ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ। ਲੇਕਿਨ ਡਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ, ਭੈਭੀਤ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਜਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਜਦੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਪੂਜਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਾਇਣ ਆਏਗਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਆਏਗੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਆਏਗੀ ਤੋ ਨਾਰਾਇਣ ਆਏਗਾ, ਪੂਜਨ ਚੱਲਿਆ, ਰੋਜ਼ ਪੂਜਨ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਆਵਣ। ਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਇਹ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵੇ। ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਲੇ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਤਖਈਅਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ ਮਸਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਉਹ ਗਲ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅੰਜਾਮ ਤੇ ਮਸਾਣ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੌਤ ਦੇ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨੇ। ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਥਾਲੇ ਦੇ ਚ। ਹਾਥੀ ਫੁਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਰਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਭਗਤ ਜਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੀਣਾ ਛੇੜ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਛੇੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਹਾਦੇਵ ਖਾਮੋਸ਼, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੇਰੌਣਕੀ ਹੈ, ਤਨ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਨੇ ਆਖਿਰ ਸਵਾਹ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰਾਖ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ। ਜਦ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲਿਖਾਈ ਪੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ।
और इस ढंग नाल मनुख नूं धार्मिक बोध भी कराया जांदा सी, संसार दा बोध भी कराया जांदा सी। सहजे सहजे तालीम पढ़न लिखण दा ते छापेखानियां दा जन्म होया तो इशारियां दी भाषा दी थां ते शब्द भाषा बोलचाल दी भाषा ने लै ली। लेकिन धार्मिक दुनिया दे ओ प्राचीन इशारे अज भी मौजूद ने। यह गल वखरी है कि समझण तो लोकी सहजे सहजे असमर्थ होंदे जा रहे ने और उन्हां नूं वास्तविक रूप देई जांदे ने, जदके वास्तविक रूप मिथिहास बन जांदा है, इतिहास नहीं हकीकत नहीं। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, आम प्राचीन जगत दी ये प्रथा है कि ए प्रकृति ए मादा युक्ति दे नाल प्रसूत होई, इस तो तीन चेले बने, ब्रह्मा विष्णु ते महेश जो प्रमाणिक ने। 33 करोड़ देवते विच ए तीन प्रमाणिक ने, सिरमौर ने। ते साहिब कहिंदे ने एक नूं संसारी होण दा लकब दे दिता गया। संसारी होण तो मुराद सिर्फ संसार दी रचना ही कीती, जो रचयिता है पालनहार नहीं है। इस ढंग नाल साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की दृष्टि च तिन्ने ही अधूरे हो जांदे ने, क्योंकि जो रचना कर सकदा है वह पालना नहीं कर सकदा, जो पालना कर रहा है वह मौत नहीं कर सकदा, और जो मौत कर रहा है वह सिरजना नहीं कर सकदा। ए तिन एक एक शक्ति। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे नहीं, हकीकत यह है जितों उत्पत्ति हो रही है पालना भी उस तो हो रही है, और जिस तो पालना हो रही है नाश भी उस तो हो रहा है। पर जे इत्थे सवाल खड़ा हो जाए कि जिस तो उत्पत्ति हो रही है मौत भी उस तो हो रही है, गल समझ विच नहीं आउंदी, क्योंकि जिहड़ा बनाएगा वह मिटाएगा क्यों, और जिन्हें मिटाना ही है वो पालना क्यों करेगा। तो इहदे वास्ते गुरबाणी दा एक बड़ा सुंदर जवाब है कि ए परमात्मा दा कोई मुद्दा ते मकसद नहीं है, उसका एक खेल है। शौक दे नाल दरिया दे कंडे ते बच्चे अपने घर बनांदे ने, और जितनी शौक नाल बनांदे ने, जितने हस के बनांदे ने, उतनी हस के तोड़ देंदे ने। बनाण लगिया जो हासा मौजूद है, तोड़ लगिया भी वो खिलखिलाहट मौजूद है। जिहड़ी प्रसन्नता बनाण लगिया है, तोड़न लगिया भी वही प्रसन्नता है, और जितनी लगन ते मेहनत दे नाल बनाया है उतने ही चाओ मल्हार ते लगन नाल तोड़ देता है। क्या प्रयोजन है इस बच्चे का? अगर प्रयोजन होंदा, कुछ मुद्दा होंदा, मकसद होंदा, तो तोड़न लगिया इसने रोना सी, तड़पना सी, बेजार होना सी, नहीं ये उसका खेल है। तो साहब कहते हैं, आवन जान एक खेल बनाया, आग्याकारी कीनी माया। जगत विच आवना ते जावना परमात्मा का एक खेल है, मकसद नहीं। जिस काम के पिछे कुछ मकसद रख लिया उत्थे तनाव खड़ा हो जाता है। क्यों तनाव इस गल का खड़ा हो जाता है, हुण मकसद की पूर्ति होवेगी कि नहीं, क्योंकि मकसद रखे है। ते जिसने जिस काम दे लई कुछ मकसद रखे है, इहदा मतलब उसने किधरे पहुंचना है ते किधरे

परम सन्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सतसंगी जनों आप जी ने पट कीरत साहब जी की रचना तो उचारण किया होया गुरु रामदास कृपालू जी की सिफत विच जो सवैया है इसका पाठ सरवण किया है।

0: पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जान्यो, धन गुरु नानक साहब कृपालू जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। धन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिवें असी बाणी विचों धन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन कहा। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों, बालन खड बलन पैरी थका सिर जुलां, जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हठ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ां बाल दिया ने। तन तपै तनूर ज्यों, बालन खड बलन पैरी थका, जे पैरां नाल चलदिया होया थक जावा, सिर जुलां मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवा, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी भटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खडियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों, बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरा ने तन दे अंगा ने की विगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी कोई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द भी वरतने हैं कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने हैं, साच कहो सुन लेखो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं इत्थों तक कि जमीन दे विच पैदा होई फसल, जमीन दे विच पैदा होए पौधे, जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख, परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नूं टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती कोई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई बारी अर्ज करना हुंना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगासी बिगसै सहज सुबाही। हुण कमल दा फुल जिहड़ा ओ सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा ओ आसमान विच है, दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक इहो जी शक्ति टिका दित्ती, ऊर्जा टिका दित्ती जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी ओहदियां किरणां नूं देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। ओह किहड़ी ताकत है, ओह किहड़ी मिकना ती शक्ति है कि जेड़ी इस कमल दे फुल नूं चिक्कड़ विच खिड़े होए नूं पूर्ण तौर ते खिड़ा देंदी है। सिर्फ अर्ज कर रहे हां कि प्रेम भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच बहुत सोहणियां उदाहरणां कुछ दित्तियां गुरु परमेश्वर दी प्रेमा भगती दे मुतलक, कि गुरु दी भगती परमात्मा दी प्रेमा भगती कैसी है। हर एक अंदर परमात्मा ने ए ताकत ए शक्ति ए ऊर्जा टिका दिती है। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने, चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है, दोनां दी दूरी है। ना तो चकोर नूं किसे ने स्कूल विच किसे ने किसे कॉलेज विच जां किसे ने अपने घर विच पिंजरे विच बंद करके उन्हूं सिखाया कि आओ देख रात नूं चंद्रमा निकलना है ते तू सारी रात चकोर चंद्रमा नूं एक टिक देखना है। सिर्फ अर्ज कर रहा प्रेमा भगती प्रेम दी दात हर एक अंदर परमात्मा ने टिकाई। चकोर नूं किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नूं किसे ने ए पाठ नहीं पढ़ाया कि आसमान दे विच ओह पैदा होए चंद्रमा नूं देख के तू सारी रात एक टिक एक नजर नाल तकी जाना है। हालां कि इथों तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई बार चंद्रमा नूं देखना हो जाता है, क्योंकि चकोर सारी रात जदों चंद्रमा आउंदा है आसमान ते एक टिक उहनूं नजर टिका के देख दीए, चंद्रमा जदों ये अपनी थां सारी रात बदलता है अपनी गतिशील चंद्रमा गति नाल जदों रुख चेंज करदा है, पर चकोर जे चढ़ते वाले पासे चंद्रमा आया पूर्णमाशी दा ते उन्हें ए नहीं कि चंद्रमा दे नाल नाल अपने लत्तां नूं अपने जिस्म नूं घुमाना है, उहदा सुभाग है। चंद्रमा जे इस पास्यों चढ़िया चढ़ते वाले पास्यों शाम नूं उन्हें सवेर तक लेंदे वाले पासे आउणा है। चकोर अपने पैरां नूं सारी रात एक थां ते थिर रखेगी, सिर्फ अपनी गर्दन नूं ही चंद्रमा दे नाल मोड़ी जाए, गर्दन मोड़दी है कदी अपने पैर नहीं। इन्नी कु उहदी सुरत इन्ना टिका कि उहनूं अपने जिस्म दा भी कोई पता नहीं, केवल तां केवल अपनी आ गर्दन नूं झुका के अपनी पिठ ते ला लैंदी है ते कई वारी उहदी गर्दन झुकना भी उहदी मौत दा कारण बन जांदा है। पर उह किहड़ी खिच है, चकोर नूं किसे ने तालीम नहीं दित्ती, चकोर नूं किसे ने पढ़ाया नहीं, चकोर लई कोई विद्या दा साधन नहीं, पर परमात्मा ने चकोर दे अंदर चंद्रमा दे प्रति एक खिच पैदा कीती, जिस खिच नूं जे किते मनुख समझे उसे खिच नूं ही प्रेम किया गया है। हुण उह दिस नहीं रही पर उहदा चंद्रमा नाल नेक है। भाई गुरदास जी दी रचना विचों अर्ज कर रहे, भाई साहब ने पहला बचन किया, चंद चकोर प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, प्रेम है ते ओ एक टिक चंद्रमा नूं देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, तार दा अखरी अर्थ हुंदा लिव लाणी, एक टिक देखी जाना। भाई साहब कहिंदे ने देखो परमात्मा ने प्रेम एक जानवर विच एक जीव विच एक पंछी विच भी पैदा कर दिता, एक टिक हो के चंद्रमा नूं देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले। हुण इत्थे भावें शब्द उन्होंने सूरज खेत क्या है कि चकवी दा सूरज नाल नेक है। दरअसल ओदा सूरज नाल ने नहीं, चकवी दा ने तां अपने चकवे दे नाल है, क्योंकि सूरज चढ़ नाल चानण विच उन्हां दा मिलाप है ते अंधकार विच रात दे खनेरे विच उन्हां दा विछोड़ा पै जांदा है। हुण इक रात दा विछोड़ा है, सारी रात चकवी ते चकवा एक दूजे नूं पुकारी जा रहे ने। हजूर दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहिंदे ने उस चकवी ते चकवे नूं मनुख वर्गा ओदा शरीर नहीं, मनुख वर्गी ओदी बुद्धि नहीं, मनुख वर्गी ओदी सोचन दी शक्ति नहीं, मनुख जितना ओ कोई कार विखार भी नहीं कर सकदा, पर देख उस चकवी ते चकवे अंदर भी परमात्मा ने खिच रख दिती। एक रात दा विछोड़ा पिया ते सारी रात एक दूजे नूं पुकार दे रहे, उन्नी देर तक चैन नहीं सकून नहीं जिन्नी देर तक चकवी ते चकवा दोनों आपस विच मिल नहीं जाते। हुण ओह केड़ी खिच है जिहड़ी सारी रात कुरलांदे रहे पुकारदे रहे। सिर मैं अर्ज करनी चाहना कि गुरु नानक साहब ने प्रेमा भगती की एक टेक होके ते अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम दी दात परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा की है। कमल विच खिच है सूरज नूं देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है, चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा बचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले, निहो कवल जल जानी है खिड़ मूह बखाले। हुण पानी ते कमल दा फुल आपसी कैसा प्यार पै कर दे कि सुकी मिट्टी दे उते कमल दे फुल कदी प्रफुल्लत हुंदे देखे ने। जमीन तां ओही है, छप्पड़ टोबा तां ओही है, पर कमल दे फुल ना सुके कदी टोबे विच, ना सुकी जमीन ते प्रफुल्लत होणगे। पानी रुकण दी देर है ते सौण दे महीने विच कमल दे फुल अपने आप नूं प्रफुल्लत करदे ने ते पानी दे विच ओह पूर्ण तौर ते खिड़ जांदे। अगे मैं अर्ज करनी है, कमल दे फुल दी खिच सूरज नाल भी है, कमल दे फुल नूं जिंदगी पानी भी दे रहा है, पर जिहड़ी दिसदी नहीं ओह खिच पानी विचों उहनूं मिल रही है। भाई साहब ने चौथा बचन कीता, कहन लगे मोर बबीए बोल दे वेख बदल काले। हुण काला बदल असमान ते चढ़ के आउंदा है, जितना मोर उहनूं देख के खुश हुंदा है, हुण बदल दा ते मोर दा आपसी की रिश्ता है। ओह असमान दे उत्ते ओह धरती दे उत्ते जदों काली घटा चढ़ी ते मोर इको दम पैला पान लग पिया ते अपने पंखों ने पूर्ण तौर ते खलार लै बखेर लै। उस बदल नूं देख के मोर दे अंदर भी परमात्मा ने एक खिच पैदा कर दिती, जेड़ी बदल नूं देख के खड़ाओ विच आया ते नचन लग पिया। पपीए वल झाती मारीए, सच जाण्यो बाकी साल दे महीने पपिया कदी भी उच्ची नहीं पुकारदा, पर जदों खाड़ ते सौण दा महीना हुंदा है भादों दा, उदों पपीए दे गले विच वी राग पैदा हो जांदा है, ओह वी बदलां नूं देख के उच्ची उच्ची पुकार लग पिया है। उहदे विच वी इक खिच है, चकोर विच, कमल फुल विच, चकवी विच, मोर ते बबीए विच, ते सच जाणू मां ते पुत्तर दी भी इक खिच है। इस्त्री दी पति ते पत्नी दे अंदर भी इक दूजे प्रति खिच है। पर भाई साहब ने सारियां गल्लां करके कहन लगे चंद्रमा दी चकोर नाल प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, पर सच जानी चंद्रमा बेवफाई कर सकदा है प्यारिया, कि पानी जेड़ा वो सुख सकदा है, कमल फुल मुरझा सकदा है, चकवी ते चकवे दा विछोड़ा पै सकदा है, चमकदे कोई बदल दूर जा सकदे ने, मोर ते बबीए विलकदे रह सकदे ने, मां ते बाप साथ छड़ के जा सकदे ने, नार ते पतार दा प्यार है पर मौत प्यार नूं विछोड़ सकदी है, पर गुरु ते रब दी प्रीत ऐसी है जिस खिरदे विच टिक जाए सच जाणो ए प्रीत मरन तो बाद भी कदी नहीं टुटदी। ए कैसी प्रीत है, भाई साहब ने प्यार दी व्याख्या करदिआं बहुत सोहणी ए पौड़ी कही, चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले, न्यू कवल जन जानिया खिड़ मूह बखाले मोर बाबीए बोल दे वेख बदल काले नार पतार प्यार है मां पुत संभाले पर प्यारिया गुरु नानक दी प्रीत कैसी है पीर मरीदा पिर घड़ी ओ निभ है नाले के मरीद दी ते पीर दी जड़ी प्रीत है ओ तोड़ निभन वाली ओ रस्ते विच टुटन वाली नहीं। आप तवज्जो देना गुरु नानक साहब ने उस करतार दी प्रेमा भगती की थी। ते जदो असी बाबे नानक जी दी बाणी पढ़ने हैं ते उन्हां ने अपनी अमृत बाणी विच अपने मन नूं मुखातब करके प्यारे नूं प्यार करन दे कुछ जुगता सानूं दसी। हजूर दी श्री राग विच एक अष्टपदी है उस अष्टपदी दे कुछ पदे मैं आप जी दे समक्ष रखने चाहना हां कि सतगुरु गुरु नानक साहब दी प्रेमा भगती कैसी है। उस अष्टपदी दियां रहाओ दियां तुकां ने रहाओ दे बचन ने मन रे क्यों छूटे बिन प्यार हे मेरे मना की परमात्मा नु प्रेम तो करन तो बिना तेरा खेड़ा छुट सकदा है की तू बंधना तो मुक्त हो सकना परमात्मा नु प्रेम करन तो बिना मन रे क्यों छूटे बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहा हर बख्शे भगत भंडार। गुरु दे राही ये समझ पैंदी है कि परमात्मा सारिया थावां ते रव्या है ते गुरु कृपा करे ते भगती दे भंडारे बख्शदा है। रहाओ दी तुक नू फिर समझिए मन रे क्यों छूटे बिन प्यार प्यार तो बिना प्रेम तो बिना उस परमात्मा नू कदी तू खुश नहीं कर सकदा। गुरु तो बिना तेन प्रेम करन दी जुगत नहीं आउंदी। वैसे तां जे इंसान नू समझ पै जाए कि प्रेम प्रीत प्यार ने ये जितने भी शब्द असी वरतने जे इंसान दे शरीर अंदर तन अंदर परमात्मा दी प्रीत नहीं प्यार नहीं ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने प्राण प्यार तो प्रीत तो बिना जिहड़े मनुखां दे तन ने कहिंदे ने मानो उह तां इस तरह ने जिवें शमशान भूमि विच मुरदे सड़ के किसे मिट्टी दा ढेर हो जा। उह तां इस तरह ने कि जिवें मानो कि एक मरिया होया शरीर प्यार है मरे कोई शरीर विच कोई हरकत नहीं ते जिस मनुख दे जिस्म अंदर परमात्मा दा प्यार नहीं सच जाने ओ खाए भी पीए भी बोले भी पर गुरु दी नजर विच एक ओ जिंदा लाश है ओ मुर्दा है जे उस अंदर प्रीत नहीं ता प्यार तो बिना छुट नहीं सकदा। हजूर दे बचन सी पढ़ने हैं अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत ए सारे गुण होण दे बावजूद भी मृतक कहीं नानका जे प्रीत नहीं भगवंत बाबा नानक जी कह रहे ने मन रे क्यों छूटे बिन प्यार मृतक कहीं नानका जे प्रीत नहीं भगवंत जे उस परमात्मा ली प्यार नहीं ते सच जानी ओ शरीर मुर्दे दे समान है उस शरीर दा कोई अर्थ नहीं ओ मुर्दे नु जितना मर्जी कोई शिंगारी जाए ते उस दा अर्थ की है कुछ भी नहीं। हजूर ने कहा प्रीत तो बिना बाबा फरीद साहब दे बचन सी पढ़ने उन्होंने जोबन दी गल कीती हुण जवानी अपने आप विच परमात्मा दी एक बड़ी वड्डी दात है ते जे किसे बंदे दे कोल जोबन भी है पर जोबन होण दे बावजूद उस दे अंदर प्यारे दी प्रीत नहीं ते मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब विच बाबा फरीद साहब कहिंदे ने प्रीत तो बिना मनुख दा तन शमशान भूमि है प्रीत तो बिना ता जवानी सड़ के राख हो जाए उदा करना की है। बाबा जी ने अमृत बचन कह जोबन जांदे ना डरां जे सह प्रीत ना जाए किन्हें जोबन जानदा वक्त दे जानदा समय दा जानदा सानू कोई डर नहीं डर तां उदो है जदों वक्त समा जा जोबन जा जीवन परमात्मा दे प्रेम तो बिना चला जाए सिमरन तो बिना चला जाए। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने अपनिया गजलां विच पहला शेर ये ए क्या है पहली गजल दा कहन लगे खवाए बंदगी आ वुर्द दर वजूद मरा ऐ मिनसान तू वजूद विच ता आया है कि परमात्मा दी इबादत करें परमात्मा दी बंदगी करें जे परमात्मा दी बंदगी नहीं सी करनी ते फिर इस वजूद विच इस तन विच आउण दा लाभ की। कहन लगे फिर एवें आसमान दे थले अपनी जिंदगी दे दिन प्या कटना बंदगी करके ही जिंदगी है जे बंदगी नहीं ते सच जानी फिर जिंदगी नहीं। हवाए बंदगी आवुर्द दर वजूद मरा वगर ने जो के चुनी आमदन नाबूद मरा जे उस परमात्मा दी इबादत नहीं ते या अल्लाह या रब मेनू इस शरीर विच रहन दा कोई शौक नहीं क्योंकि तेरी बंदगी दे शौक करके ही मैं जी रहा हां। प्यारियो तवज्जो दिया जे बाबा नानक जी ने प्रेमा भगती की ते मैं अर्ज करना पिया बाबा जी दी बाणी विचों पुछ लीए कैसी प्रेमा भगती उन्हां कीती उन्होंने विच प्रमाण दिता मन रे क्यों छूटे बिन प्यार ते बाबा फरीद कह लगे हकीकत है कि जोबन जांदे ना डरा जे शह प्रीत ना जाए फरीदा किती जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए के किते जवानी प्यार तो बिना ना चली जाए साई नू नेह करन तो बिना ना व्यर्थ चली जाए। सच जानो उस महापुरुष दी कली जवानी ही नहीं जोबन विच नहीं ओ ता अपने बचपन तो ही रब नू इश्क करन लग पए। बाबा फरीद साहब अजे बचपना है ते कुरान ओना नू जबानी कंठ हो गई है अजे बचपना है कि कितना कितना समा रब दी इबादत भी जुड़े रहिंदे ने आखर ओ कैसी परम अवस्था मिली कि जिदन जमीन ते पई कोई खाक मिट्टी अपने मुंह दे विच पाई ते उस मिट्टी विचों भी शक्कर वर्गा स्वाद आ गया क्यों अपना अंदर इन्ना कु मिठा हो चुका सी आप मिठास दे भंडारे बन चुके सन ते हकीकत एवे असी कहां के मिट्टी मिट्टी हो गई जमीन ते मिट्टी मिट्टी नहीं होई असल विच बाबा जी दी रसना दी मिठास करके मिट्टी भी मिट्टी हो गई। उस महापुरुष ओ आप शक्कर गंज है शक्कर दे खजाने ने उस महापुरुष ने क्या कहन लगे जोबन चला जाए प्रीत तो बिना जवानी चली जाए प्यार तो बिना जिंदगी दा समा निकल जाए प्रीत तो बिना ते ए अंदर नू दुख पासदा है केवल जोबन नहीं अपने अंतले समय भी ओ महापुरुष रब दी इबादत भी जुड़िया है खुदा दी इबादत भी जुड़िया है ते जदो नमाज अदा पे करदे ने अचनचेत गशी पई है बेहोश होके जमीन ते गिर गए सजदा पूरी तरह कर ना सके मुरीदा ने बाबा फरीद साहब जी नू संभालिया संभालन तो बाद उन्होंने बाबा जी दू जदो तलिया पैरां दियां चशियां उन्होंने खत पकड़ के खत पैर कुटे नपे ते उठ के बैठ गए ते पहला प्रश्न सी उस महापुरुष ठीक है कहन लगे नमाज अदा हो गई मेरा नेम निभ गया बंदगी वाला समा सही सफल हो गया। बैठे हुए मुरीद ने क्या बाबा साहेब नमाज पूरी तौर ते अदा ना हो सकी पूर्ण तौर ते आप इको दम जमीन ते डिग पे कहन लगे लियाओ पानी कराओ मेरा वजू मैं परत के फिर खुदा दी याद भी जुड़ना चाहना मैं नमाज अदा करनी चाहना वा। ते किसे ने उथे प्रश्न कर दिता सी के बाबा साहेब सारी जिंदगी ता अल्लाह ताला दी विरद विच ओदे जिक्र विच ओदी याद विच बतीत होई हुण जे नई नमाज हो रही शरीर खेचल विच है तन नू थोड़ा बहुता खेद है हुण अज तुसी ए रहन दियो विश्राम करो। उन्होंने उसे वेले पिछे मुड़ के कहा कहन लगे तेनू की पता मेरा अंदर किथे खलोता होया है तेनू केवल मेरी बार दी क्रिया दिसी है कि मैं इन्ने साल रब दी इबादत कीती इन्ने साल मैं परमात्मा दा जिक्र कीता पर तेनू की पता मैं अंदरों किथे टिकया वा लियाओ पानी लियाओ आव ते मैं वजू करके परमात्मा दी याद भी जुड़ा रब दी याद भी जुड़ा। ओ महापुरुष कह रहे ने कि वक्त चला जाए प्रीत तो बिना ते व्यर्थ है। बाबा नानक साहब कह रहे ने मन रे क्यों छूटे बिन प्यार प्यार तो बिना तू प्रेम तो बिना तेरी बंद खलासी निखोनी हुन प्रेम बद्दा चक्की कर्म नहीं प्रेम ता एक अंदर दी खिच है प्रेम ता आपा वारन वाली एक अंदर दी बिरती है ते धन गुरु नानक साहब कृपालू ने अपनी अमृत बाणी विच ए उदाहरणा दित्तियां उस अष्टपदी दी पहली एग्जाम्पल पहली उदाहरण ए वे मैं अर्ज कर रहा नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिबलाई कैसी भगती कीती केवल ता केवल चौंकड़ा मार के नहीं अपने आप नू पूर्ण तौर ते रब दे चरणा विच उन्होंने फिदा कर दिता ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਫਿਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਛਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਕੈਸੀ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਟੁਕਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੇਵਲ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੌ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਘੋ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਢਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਿੜਿਆ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇੱਕੋਦਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਕਮਲ ਦੀ ਨਾੜ, ਕਮਲ ਦੀ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਵੱਜੀ, ਕਮਲ ਦੀ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਜਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਤੇ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਜੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਇੱਕੋਦਮ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਮਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖੱਬੇ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਠੋਕਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਧੱਕਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਵੇ ਸ਼ਿਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਦੀ ਉਲਾਮੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਲਾਮੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਕੋ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਗੰਧੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸੁਹਾਪਣ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਟਿਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਮੈਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਦੀ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਉੱਠਦਾ ਸਵੇਰੇ, ਲਹਿਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਤਣੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਛੱਡ ਪਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਮੇਰੀ ਖੌਂਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਿਣਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦੇਰ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਖੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਦਾ, ਨਾ ਸੁਗੰਧੀ, ਨਾ ਰੂਪ ਤੇ ਨਾ ਭਵਰੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਪਾਣੀ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਠੋਕਰ ਵੀ ਸਹਾਰਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਮਨੁੱਖ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਮਲ ਦੀ ਥਰਾਂ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਕਿਵੇਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੂੰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਨੇ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਤੇ ਯਕ ਲਖਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਇਹ ਕਦੀ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਲੜ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਇਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਰੇ ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੇ ਮਨ ऐसी हर्षों प्रीत कर जैसी जल कमले, जिमें कमल ते पानी दी प्रीत है, लहरी नाल पछाड़िया जे लहरा ओनू उठ के पछाड़ दिया ने धक्के मार दिया ने, पी विगसै असने ओ लहरा दिया ठोकरा विच भी खसी जांदा है, ओ ठोकरा विचो भी प्रेम दिया पिंगा झुटी जा रहे है। मेरे बाबे नानक ने इस तरह प्रीत की जिमें कमल दा फुल ठोकरा सहार के भी प्रीत प्या करदा सी। जे किसे ने वट्टा चुकया, जे किसे ने दीवाना किया, जे किसे ने मस्ताना किया, जे किसे ने पागल किया, सब कुछ सह के भी मेरे गुरु नानक साहब ने अपने प्यारे परमात्मा दे नाम नू फिर भी प्रीत की थी। दूसरी उदाहरण कृपालू दाता जी ने अमृत बाणी भी दिती कि किहो जी प्रेमा भगती करदे पए, प्रमाण देंदे ने मना परमात्मा दी भगती जे तू करन तुरिया है ते प्रेमा भगती इस तरह कर जिमें मच्छी ते पानी दा आपसी प्रेम है। वैसे ता प्रीत है मच्छी दिखे कि जितना पानी वध होवे उन्ना मच्छी खेड़े विच रहिंदी है, जितना पानी घटदा है त्यों त्यों मच्छी विच उदासीनता ते तड़ पैदा हुंदी है। ज्यों ज्यों परमात्मा दा भगत बंदगी करदा है त्यों त्यों खेड़े विच आउंदा है, ते जदों किते तोटा आ जाए सच जानो ओ मच्छी दी तरह लुड़चन लग पैंदा है, तड़फन लग पैंदा है। ते बाबा जी ने कहा रे मन ऐसी खरसों प्रीत कर, नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लिवलाई। रे मन ऐसी खरसों प्रीत कर कैसी, कहन लगे जैसी मछली नीर, जिमें मच्छी पानी नू प्रीत भी कर दी है। ज्यों अद कहो तो सुख घना, जितना पानी ज्यादा होवे मच्छी ओनी प्रसन्न है। कहन लगे ज्यों अद कहो तो सब घना, मन तन शांत शरीर, ओदे तन नू ओदे मन नू खेड़ा, क्योंकि मच्छी पानी विच रह के अत दी आनंद विच है। ऐसी प्रीत कर। बाबा जी ने तीसरा प्रमाण दिता कि प्रेमा भगती की है, मच्छी पानी तो बिना किसे नू समझौता नहीं कर दी। तीसरा प्रमाण दितो ने कि रे मन ऐसी खरसों प्रीत कर, नानक नाम निरंजन जान्यो इस तरह। कहन लगे रे मन ऐसी खरसों प्रीत कर जैसी चात्रक में, जिमें एक पपिया स्वांती बूंद नू प्यार प्या करदा है, जिमें एक चात्रक नक्षत्र तो डिगण वाली बूंद नू उडीकदा प्या है। ओदे सामने सरोवर पानी दे भरे ने, पर कदी ओ सरोवर दा पानी नहीं पिएगा। तालाब पानी दे भरे ने, पर चात्रक उस पानी नू पसंद नहीं करेगा। दरिया पानी दे भर के वगदे ने, पर कदी भी ओ इस नू प्यार नहीं करेगा। पर प्यारियो सब कुछ ओ पानी वखरे वखरे तालाबां दे खूहां दे नदियां दे नालियां दे त्याग देगा। ओदे प्राणा दी जेड़ी प्रीत है ओ केवल ता केवल परम पिता परमेश्वर दा नाम है। जिवें चात्रक स्वांती बूंद नू प्यार करदा है ते रब दी बंदगी करन वाला सब कुछ छड़ देंदा है, सच जानो ओनू केवल गुरु ते परमात्मा ही चाहिदा है। मैं एक खिन विचों निकल के एक प्रमाण एदे नाल होर अर्ज करना चाहना। चात्रक कदी भी समझौता नहीं करदा स्वांती बूंद तो बिना। मेरे गुरु अर्जुन साहब नू पुछया दाता जी प्रेमा भगती की है, उन्हां ने एक प्रमाण दिता ओहा प्रेम पिरी। प्रेमा भगत की है ओहा प्रेम पिरी, कहन लगे कनक मानक गज मोतियन लालन नह नहा नहीं। प्रेमा भगती एक है कि जे कोई प्यारे दे सामने लिया के हीरियां दे ढेर ला के कह तू बंदगी छड़ दे, गुरु नू छड़ दे, कीमती हीरे चुक ले। जे कोई ओदे सामने कीमती मोती लिया के कह मोतियां नाल झोलियां भर लै पर नाम दे मोती नू छड़ दे। जे कोई ओदे सामने कीमती गज ए भी मोती कह सामने लिया के रखे तू परमात्मा दी इबादत छड़ दे। साहब कहिंदे ने जिहड़े प्रेमा भगती करन वाले ने ओ कह रहे ने ओहा प्रेम प्री कनक मन गज मोतियां लालन नह नह नहीं। जे कोई कह चल हीरे मोती छड़ तेनू आ तखत दे देने, तेनू आ दुनिया दा हर स्वाद हंडाण वास्ते भोगां वास्ते पदार्थ दे देने। अगो उत्तर मिलदा राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किच किच ना चाही। नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिवलाई ओहा प्रेम प्री कनक मान गज मोतियां लाल नै ना नही राज न भाग ना हुक्म ना साधन किच किच ना चही ओनू चाहिदा कि चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही कहन लगे नानक तपत हरी मिले प्रेम प्री एवे प्रेमा भगती मेनू तेरे चरणा दी शरण चाही दिखे नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लिवलाई भगती प्रेमा ला लिव ला के कीती ते मेरे सच्चे पातशाह ने फिर बाणी विच कहा रे मन ऐसी खरशो प्रीत कर जैसी चात्रक में सार भर थल हरी आवले पर प्रेमा भगती करन वाला बूंद नू एक बूंद ना पव ही के जितने मर्जी पानी दे भंडार होन पर चात्रक दी प्यास केवल स्वांती बूंद ही बुझाए। साहब ने पहला प्रमाण कमल फूल दा दिता, दूसरा कृपालू दाता जी ने मच्छी दा दिता,
1: तीसरा प्रमाण सच्चे दस्तगीरी ना जन्म तो अखां दे खुलदिया ही मनुख दियां अखां कुछ खोज रही ने लभ रही। कुछ विद्वान ऐसा कहने एक तलाश का ना ही मनुख है और मनुख है जीवन भर की तलाश। जन्म तो ही मनुख की चेतना मनुख के प्राण कुछ लभ रहे हैं कुछ खोज रहे हैं। खोज खोज के जो लभे है जो मिले है उस नाल तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति किवें होनी है इसका पता भी कोई नहीं इसका बोध भी कोई नहीं। तो तलाश जारी है जीवन दर जीवन जन्म दर जन्म अनंत काल। इस वास्ते कुछ विचारक कहने ने अनंत तलाश का ना ही मनुख है मनुख है एक तलाश का नाम कुछ खोज रहे कुछ लभ रहे। दोहरावा मैं खोज खोज के जो लभे है उस नाल तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति किवें होनी है इसका पता भी नहीं इसका बोध भी। फिर विद्वान कहने ने मनुख तृप्ति लभ रहा है तृप्ति तो बिना और कुछ भी नहीं चाहिए। मनुख रजेवा लभ रहा है रजेवे तो बिना मनुख नु और कुछ भी नहीं चाहिए। जो रज जाए उन्हों राजा कहने ने राजा दे अर्थ जो रज गया और कोई इसके अर्थ नहीं। जो रज गया राजा जो भूखा है भिखारी तलाश है राजा होने की जमया भिखारियां की तरह जीविया भिखारियां की तरह यकीन जानो मर गया भिखारियां की तरह। मरदे दम तक तलाश ते जा रही है खोजते जा रही है। खोज खोज के जो लभे है उस नाल ते रजेवा होया नहीं तृप्ति होई नहीं। तो जो रजेवा ही नहीं होया तो फिर राजा नहीं है कि जे राजा नहीं है तो फिर भिखारी है। जे मंग जा रही है तो मंगता है जे भुख जा रही है तो भिखारी है। भुखा भिखारी होंदा है रजे होया राजा होया। प्रथम मनुख की खोज का केंद्र जमीन ए धरती रही है। धरती ने मनुख की झोली विच अन्न पाया धन पाया तन दियां जितनियां लोड़ां ने इहदी झोली नूं भरे लेकिन जमीन मनुख नूं रजा नहीं सकी रजा नहीं सकी तृप्ति दे नहीं सकी। इतनी जमीन दे होंदिया मनुख भुख है मनुख भुख है। मैं फिर अर्ज करा भुखे नूं ही भिखारी कहिंदे ने रजे होए नूं ही राजा कहिंदे रज गए राजा। अजे भुखा है भिखारी भुख ते मंग ते मजबूर करे कुछ और चाहिए और चाहिए और चाहिए। अनंत जन्मां तों ए भुख जारी है। तन दियां लोड़ां ने लोड़ां बड़ी सीमित ने मन का लोभ है लोभ सीमित नहीं है नहीं। ध्यानपूर्वक श्रवण करना। तन दिया लोड़ा कोई बहुत ज्यादा नहीं, जो पशुआ भी लोड़ा ने वही साड़ी लोड़ है, पर तन की लोड़ नो जद मन लोभ बना लेना है। इसे निका जिया मैं उदाहरण दे दिया, जैसे भोजन की भुख है तो ठीक है मनुख दो रोटियां तीन रोटियां खा लेगा, चलो चार पांच खा लेगा, त्रिपत हो गया, तन ते रज गया, तन ते राजा हो गया। लेकिन मन कहता है स्वाद ते आ रहा जे और खाई, भुख नहीं है ये खा रहे है, ये लोड़ नहीं है लोभ बन गया, ये तन की लोड़ नहीं ये मन का लोभ बन गया। इस वास्ते कई ते कहने ने की करिए, पेट ते भर गया है पर मन नहीं भर गया, मन भरदा भी नहीं, क्यों? तन दिया लोड़ा मन दिया लोड़ा ही नहीं है, पर तन दिया लोड़ा नू भ्रांति करके मन ने अपनिया लोड़ा समझ दे। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा, जैसा मन मन ले पर मन ले। आपदी ज्ञात ले अर्ज करा, जो मन मन लेंदा है वो है, जो मन नहीं मनता वो मन की दुनिया च नहीं है। सवाल यह नहीं है कि वो वस्तु वो हस्ती है या नहीं, सवाल यह नहीं, सवाल यह है मन मनता है कि नहीं। अक्सर मनुख कह देता है पढ़िया तो है पर की करिए मन नहीं मनता, सुनिया तो है पर की करिए मन नहीं मनता, वेख्या ते है पर की करिए मन नहीं मनता। जो मन मनता ही नहीं वो मन का हिस्सा नहीं बनेगा, मन का हिस्सा वही वस्तु वही हस्ती बनती है जिनू मन मन लेता, मन मन लेता, मन पदार्थ नू मन लेता है परमात्मा नू नहीं मनता, मन परिवार नू मन लेंदा है निरंकार नू नहीं। एक बहुत वड्डी सच्चाई है जिनू खुले दिल नाल कबूल करना है, मन धन नू मन लेंदा है मन धर्म नू नहीं मनता, मन पूरे दे पूरे परिवार नू मन लेंदा है संसार नू मन लेंदा है मन करतार नू नहीं मनता। जी तुसी आखो साडा मन मनदा है क्योंकि गुरुद्वारे आया, मन मनदा है ताई ते आया, कोई मनुख कह सकदा सी मंदिर जा रहे हैं गुरुद्वारे जा रहे हैं मस्जिद जा रहे हैं नमाज पढ़ रहे हैं पूजा पाठ कर रहे हैं जप तप कर रहे हैं कथा कीर्तन सुन रहे हैं मन मनदा है। गुस्ताखी माफ ते माफ कर देना, गुरबाणी इस तरह कहती है कोई लखां करोड़ां च इक अद्धा मन मनदा है बाकी नहीं मन। इस संबंध मैं दो श्लोक थोड़े सामने रखने हैं ताकि गल पूरी स्पष्ट हो जाए। ये दो श्लोक एक ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का, एक भगत सिरमौर श्री कबीर जी का। ये दो श्लोक जिन्हां बाणियां विच हैगे ने उन्हां बाणियां का सिरलेख इको ही है, गौड़ी महला पंजवां बावन अखरी। धन गुरु अर्जन देव जी का इतने श्लोक बावन अखरी बाणी का नाम है, गौड़ी श्री कबीर जी बावन अखरी। अखरां दी महिमा जो है गुरु नानक देव जी महाराज ने पट्टी लिखी है आसा राग दे, गुरु अमरदास जी ने पट्टी लिखी है आसा राग दे, अखरां दी महिमा दे उत्ते बावन अखरी लिखी है गौड़ी राग दे गुरु अर्जन देव जी ने और गौड़ी राग दे भगत कबीर जी ने अखरां दी महिमा गाई है। क्यों? आवाज ते पशुआं कोल भी है, कौआ भी काय काय करता है, शेर भी गरजदा है, गऊ भी बोलदी, पंछी भी चहचहांदे हैं। आवाज ते पशुआं कोल भी है, अल्फाज नहीं है, धुन ते पशुआं कोल भी है, अखर नहीं है, अखर नहीं। धुन तो आवाज तो पशु की होंद का पता चल जाए, और केड़ा पशु है यह भी पता चलता है भी ये शेर दी गर्जन इस आवाज तो ही पता चलता पे है कोई नहीं इस आवाज तो ही पता चलता पे है कौआ है आवाज तो यह तो बोध होंदा है कि आवाज किस दी है पर जिस दी आवाज है उसनों पूछिए तू कितों आया कितने जाना है की लभ रहे इस सब कुछ कहने वास्ते उदे कोल अल्फाज नहीं अक्षर नहीं इस वास्ते पशुआं दा सारे दा सारा विकास रुकया हजारां साल पहले जिथे पशु सन अज भी उत्थे ने हजारां साल पहले जिथे मनुख सी अज नहीं इस दा जिन्ना बैरूनी विकास होया सब अखरां दे आसरे दे होया अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखण बोलण वाण अखरां सिर संजोग वखण शिक्षा दी साहब ते कहिंदे ने मनुख नूं वेख के कुछ भी नहीं पता चलदा ए मनुख की है वेख के इतना ही पता चलदा इतनी इहदी उम्र कितनी होवेगी उम्र दा बोध हो जांदा रंग दा बोध हो जांदा नैन नक्श दा बोध हो जांदा कद बुद्ध दा बोध हो जांदा कपड़े की पाए ने कैसे पाए ने इसका बोध हो जाता है लेकिन यह मनुख की है कुछ भी नहीं पता चलता सेक्स का पता चल जाता है मेल है फीमेल है इन्ना पता चल जाता है स्त्री है पुरुष है इतना ही पता चलता है पर यह है कि रजोगुणी है तमोगुणी है सतोगुणी है मूर्ख है स्याणा है शांतमयी है क्रोधी है धार्मिक है अधार्मिक है वेख के कुछ भी नहीं पता चलता उक्की नहीं पता चलता फिर किस तरह पता चलता है मनुख नूं किवें पढ़िए ये मनुख की है साधी कहिंदे ने तां मर्दे सुखन ना गुफ्ता भाषण ऐबो हुनर निहुफ्ता भाषण पंज दस दिन उसकी संगत करिए उसकी बोल चाल तो पता चल जाता है धार्मिक है कि अधार्मिक है मूर्ख है कि स्याणा है क्रोधी है कि शांतमयी है जल्दबाज है कि धीरजवान है यह दस बारह दिन उसकी संगत करदे हां उहदे बोलां नूं सुणदे हां सब कुछ पता चलता है मनुख अपने बोलां तो पहचाणिया जांदा है की है शकल सूरत तो सिर्फ शकल सूरत दा ही पता चलता है रंग दा पता चलता है कद बुत दा पता चलता है नैन नक्श दा पता चलता है रंग दा पता चलता है कपड़ियां दा पता चलता है सेक्स दा पता चलता है पर यह मनुख की है नहीं पता चलता ता मर्दे सुखन ना गुफ्ता भाषण ऐबो हुनर निहुफ्ता भाषण सिर्फ बोलां तो मनुख की पहचान ही नहीं आती मनुख का विकास भी सारा बोलां दे खड़ा है अखरां दे खड़ा है अगर मनुख को अल्फाज बोल खो ले जान ना हो तो मनुख उथे ही चला जाएगा जिथे पशु है सारा विकास रुक जाएगा जैसे कि मैं एक उदाहरण दिया गुंगे का सारा विकास रुकया है क्यों इहदे कोल बोल कोई नहीं इहदे कोल अल्फाज कोई नहीं इहदे कोल अखर नहीं है सीमित जैज की दुनिया है इस वास्ते पंजाबी च कहिंदे ने गुंगे दे इशारे गुंगे की मां जाने और कौन जाने और किसी नूं कुछ नहीं पता चलता है। गुंगा मनुख कोई चोटी का संगीतकार नहीं देखा कवि दार्शनिक नहीं देखा गुंगा मनुख कोई चंगा व्यापारी भी नहीं देखा गुंगा मनुख राजनीतिक भी नहीं देखा जो धार्मिक ग्रंथां की पड़चोल करिए कोई गुंगा ऋषि मुनि भगत संत भी नहीं देखा विकास दे सारे दरवाजे बंद ने तरक्की दे सारे रस्ते रुके हुए इहदा मतलब मनुख का जितना विकास होया है उन्नति हुई है जबान दे आसरे महाराज आप कहने ने ध्यान देना अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुण गा अखरी लिखण बोलण मां अखरा सिर संजोग वधा। दो बोल बोले ओपरा मनुख अपना बना गया। दोस्ती योगी दोस्ती संबंध जुड़ते ने बोल चाल, पर दो बोल ऐसे बोले ने संबंध टूट गए। टूट गई प्रीत बुर बोल। महाराज कहने ने बड़ी पुरानी दोस्ती दो बोलां नाल टूट के रह गए। बड़े बड़े घरेलू कलेश झगड़े महाभारत एक अखर तो शुरू हो जाता। द्रौपदी की जबान चो ही निकल गया सी कि अंधे का अंधा है। धरतराष्ट्र अंधा सी, उसका लड़का दुर्योधन ये अंधे का अंधा है। लंबे चौड़े इतिहास के पन्ने में थोड़े सामने ना रखा, क्योंकि द्रौपदी बहुत अच्छी चित्रकार सी, कवित्री भी सी, संगीतकार भी सी। इतनी कला किसी एक मनुख दे होंदी नहीं, पर उस दे है। नवा महल बनाया सी उन्होंने घर, ते घर दे अंदर सरोवर, घर दी चट करनी सी, महल दा महूरत होना सी। बड़े बड़े मेहमानों नूं बुलाया सी राजा, राजियां दा महल। आपदी ज्ञात नहीं अर्ज करा, द्रौपदी ने उस सरोवर नूं सजाया, उहदे ते इस ढंग दी पेंटिंग कीती। उस सरोवर बगीचा लगदा सी, इधर क्यारी बनी, इधर क्यारी बनी, इधर पुल किड़े, इधर पुल किड़े, ऐगा पानी सी, पानी विच चित्रकारी, पानी विच बगीचा बना दिता।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Bad and Sardarni Surinder Kaur Bad. 1550 Radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo 604-900-7790.
2: फैमिली केयर फार्मेसी
3: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर 1
2: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो
3: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो
2: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो
3: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन
4: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
2: जां कॉल किरण एट 604-581-1900
5: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.

रोज मनुखदा मनमई कोश विज्ञानमई कोश रोगी होंदा जा रहा है। इन्हों विज्ञानमई कोश क्यों कह शक्तियां बड़िया ने, बड़ा कुछ है, बशर्ते इसनों सुचेत करिए। तन की संगत करद्या करद्या, चूंकि तन जड़ है तो सूक्ष्म शरीर भी अचेत हो गया है। जैसी संगत वैसी रंगत, संगत दा असर है। ये पंजे दे पंजे तत् जड़ ने, जड़ की संगत करद्या करद्या सूक्ष्म शरीर भी जड़ हो गया, भाव अचेत हो गया, सौ गया। तो मैं कई दफा अर्ज की है, वाहेगुरु वाहेगुरु दा जप, वाहेगुरु नूं सुनाण वास्ते नहीं, इस सुत्ती हुई चेतना नूं जगाण वास्ते, इस सुते हुए मन नूं जगाण वास्ते। सिमर सिमर गुर सत गुर अपना, सोया मन जागाई। ये कितना जपिए, बारंग बार बार प्रभ जपिए, जपी जा जपी जा, उतने चिर तक जपी जा जितने चिर तक मन पूरा जागदा नहीं। पूर्ण तौर ते जागया होया मनुख सूक्ष्म तल ते महाराज कहंदे ने इस ग्रह में कोई जागृत रहे, इस ग्रह में कोई जागृत रहे। साबत वस्तु ओ अपनी लवे, साबत वस्तु की परमात्मा परम रस परम आनंद। ये किसनों प्राप्त होंदा है? जेदा मन पूर्ण तौर ते जाग गया। कहिंदे ने एक भाग ही जागे है, मन दे नौ भाग सुते पे ने। तो उस एक भाग नू थोड़ा जिहा पदार्थां दा बोध है, थोड़ा जिहा संसार दा बोध है, बाकी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस वसी गुरबाणी एक होर शब्द वर्दी है, जागत सोया जन्म गवाया। ये जागदा दिखाई दे रहा है जबकि टोटली सुता पे है, कोई परमात्मा का पता नहीं, कोई परम रस का पता नहीं, कोई समाधि का ज्ञान नहीं, कोई प्रेम का पता नहीं, कोई उस महान चानण का पता नहीं। जागत दिखाई दे रहा है जागदा, सोया इति सूक्ष्म शरीर दे तल ते सोया होया, सुता होया। जागत सोया जन्म गवाया। वाहेगुरु वाहेगुरु दे जप नाल जद कोई सूक्ष्म शरीर नूं अद तों वध जगा लैंदा है, ऐसे मनुख नूं कोई गैबी शक्तियां मिल जांदियां ने, जिन्हों रिदियां सिदियां भी कह देंदे ने। ऐसा मनुख उस सूक्ष्म शरीर नूं अपने शरीर दे चों कढ भी सकदा है, किधरे लै जा भी सकदा है, फिर वापस ले आ सकदा है। तुसीं आखोगे मैं की आखदा पिया, साडे गुरमत दे च भी ऐसा हुंदा रहा, बाबा राम राय करदे रहे। हर दूजे तीजे महीने वो ऐसा कर लैंदे सन, फिर वापस आ जांदे सन। एक दफा अपनी पत्नी नूं कहा, मैं एक हफ्ते बाद आना है, मेरे इस देही दा ख्याल रखें, मेरे शरीर दा ख्याल रखें, क्योंकि कुछ मसंद मेरे दुश्मन ने ते मैनूं मुर्दा जान के किधरे होर अनर्थ ना कर बैठन। पत्नी ने कहा, मैं दसांगी नहीं किसे नूं, लेकिन मसंदा नूं पता चल गया। तीसरे दिन उते अर्थी सजा के ले आए, बई राम राय गुजर गए ने, खत्म हो गए, आपां ले जाना है, चिता जलानी है। हुण इह मसंद बहुते सन भ्रष्ट हो गए सन, इन्हां दी गलत वरतों राम राय करदे रहे तो मसंद अज राम राय दी गलत वरतों करन लग पै, इस तरह ही होंदा है। चिता ते लिटा दिता है शरीर, मरिया होया शरीर ते आकड़ जांदा है, पर तीन दिन का नहीं आकड़िया होया सी, मुर्दा नहीं सी, पर लिटा दिता है, कफन पा के ले चले।

काट की जान। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जे ते बदन श्रेष्ठ सब धार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्भकार निर्लंब, याद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पेहव न पावत बेदा।

तत काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहरि हो ताके तावतन कमह हरि हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शाह श्वसक न कोई एक बार जिंत मैं संभारा काल फांस ते ताहे उवारा जिन नर नाम तिहारो कहा अंधारद दुष्ट दोख ते रहा खड़केत मैं सरन तिहारी आप हाथ दयाले हो उबारी सर्ब ठौर मोहो हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता श्री अस्तोजा पहे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशित फल पावै सोई दुख न तस व्यापत कोई अड़िल सुनै गोंग जो आहे सो रसना पावाई सुनै मूड चित लाए चतुरता आवाई दुख दर्द पाव निकट ना तिन नर के रह हो जो या की एक बार चाओ पई को कह चाओ पई संबत सतरह सहस पणिज अर्ध सहस पुण तीन किहिज पाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर स्तद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चित्रित्रोपखयाने त्रिया चरित्रे मंत्री भूप संवादे 405 चरित्र समाप्त मास्त सब मास्त आप जूं दोहरा दास जान कर दास पार की जय कृपा अपार आप हाथ दे राख मोहे मन क्रम बचन विचार चाओ पई मैं ना गणेश प्रथम मनाऊं किसन बिसन कब हूं न त्याऊं कान सुने पहचान तन सो लिव लागी मोरी पाग इन सो